0: ये लोग जब तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं तो जिस नीयत से ये सुनते हैं हम उसे खूब जानते हैं, और जब ये सरगोशियां करते हैं यानी जब जालिम कहते हैं कि तुम तो एक ऐसे शख्स की पैरवी करते हो जिस पर जादू किया गया है।
1: انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا
0: देखो उन्होंने किस किस तरह की तुम्हारे बारे में बातें बनाई हैं, सो ये गुमराह हो रहे हैं और रास्ता नहीं पा सकते।

0: देना।
1: और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया मगर इबलीस ने न किया। बोला कि भला मैं ऐसे शख्स को सजदा करूं जिसको तूने मिट्टी से पैदा किया है।
0: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي

0: और अगर हम चाहें तो जो किताब हम तुम्हारी तरफ भेजते हैं उसे दिलों से महव कर दें, फिर तुम उसके लिए हमारे मुकाबले में किसी को मददगार न पाओ।
1: इल्ला रहमतन मिन रब्बिका इन फज़लहू काना अलैका कबीरा।
0: मगर उसका कायम रहना तुम्हारे परवरदिगार की रहमत है, कुछ शक नहीं कि तुम पर उसका बड़ा फजल है।

और इस तरह उस शख्स को उनकी पैदावार मिलती रहती थी। तो एक दिन जबकि वो अपने दोस्त से बातें कर रहा था, कहने लगा कि मैं तुमसे माल और दौलत में भी ज्यादा हूँ और जत्थे और जमात के लिहाज से भी ज्यादा इज्जत वाला हूँ।

और उसके मेहों को अजाब ने आ घेरा और वो अपनी छतरियों पर गिर कर रह गया, तो जो माल उसने उस पर खर्च किया था उस पर हसरत से हाथ मलने लगा और कहने लगा कि काश मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक न बनाता।

मैंने उनको ना तो आसमानों और जमीन के पैदा करने के वक्त बुलाया था और न खुद उनके पैदा करने के वक्त, और मैं ऐसा न था कि गुमराह करने वालों को मददगार बनाता।

0: उसने कहा कि भला आपने देखा कि जब हमने पत्थर के पास आराम किया था तो मैं मछली वहीं भूल गया और मुझे आपसे उसका जिक्र करना शैतान ने भुला दिया और उसने अजब तरह से दरिया में अपना रास्ता लिया।
1: قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا
0: موسیٰ نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے
1: فوجد

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे इंस्टेंट प्रॉम्प्ट्स एंड मिसिंग थॉट्स के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं मिस मारिया, अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जी मिस, ब्रेक में जाने से पहले हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, क्या टेक्नोलॉजी ने स्टूडेंट्स की अटेंशन स्पैन कम कर दी है आपके ख्याल में?
2: बेसिकली ये एक बहुत सीरियस इशू है, ठीक है। इसको बहुत लाइटली मुंह पर डिस्कस किया जाता है, इतना सीरियस इसको लिया जाता नहीं है। ये बहुत सीरियस और क्रिटिकल इशू है हमारा। इसका जवाब बोलूंगी जी हाँ बिल्कुल। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो बहुत इफेक्ट्स हुआ है उनके थिंकिंग के ऊपर, उनके अटेंशन स्पैन के ऊपर। इसके एक मेन रीजन ये होती है कि वो कॉन्स्टेंट स्क्रीन के ऊपर बैठते हैं, उनकी एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इसके एक रीजन हो सकती है। अब होता क्या है बेसिकली ये कि वो चाहते हैं कि जो क्वेश्चन हमने पूछा है उसका हमें एक मिनट या एक सेकंड के अंदर आंसर मिल जाए, जिसकी वजह से वो सब्र नहीं कर पाते, उनके बिहेवियर के अंदर इतना ठहराव नहीं आता और उसका फोकस जो उनका होता है वो बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाता है चीजों के ऊपर। वो लेक्चर सुनते वक्त इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, असाइनमेंट में डेप्थ और उनकी जो डिटेलिंग होती है वो मिसिंग होती है और सेल्फ पेस्ड लर्निंग उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि उनको आदत नहीं रहती। चैट जीपीटी ने हमें आदि बना दिया कि हम में उनसे क्वेश्चन पूछें वो उसका आंसर उस तरीके से हमें एक मिनट या एक सेकंड से ज्यादा वो टाइम नहीं लेता। तो उसी चीज की आदत की बेस के ऊपर जो स्टूडेंट का बिहेवियर है वो भी डाइवर्ट होता जा रहा है, उनका जो टेंशन है वो भी, उसका जो टाइम पीरियड है वो भी कम होता जा रहा है। अगर हम किसी प्रॉब्लम के ऊपर उनको सोचने के लिए बोले तो वो शायद एक या दो या तीन मिनट से ज्यादा उस पर बैठ के सोच नहीं सकते, वो लेक्चर ज्यादा टेंशनली सुन नहीं सकते, वो बोर होना शुरू हो जाते हैं। इवन कि मैंने अपने लेक्चर में नोट किया है कि अगर हम लेक्चर दे रहे हो तो वो हर एक मिनट के बाद अपना सेलफोन निकाल के चेक कर रहे होते हैं। उनको इतनी आदत हो गई है स्क्रीन की कि वो एक मिनट ध्यान से बात को सुन भी नहीं सकते, वो ये सोचने की जहमत ही नहीं करते कि क्या पता हमें इसमें से कुछ लर्निंग प्रोसेस मिल जाए, हमें लर्निंग का कुछ हो
1: सके। उनको पता है कि सोल्यूशन उनके पास अवेलेबल
2: है। तो वो इस चीज पे सब्र ही नहीं करते, वो शायद ये सोचते हैं कि ये हम बोर हो रहे हैं, वो जल्दी बोर होने लगते भी हैं क्योंकि उनको आदत स्क्रीन की हो गई है, उनको आदत इंस्टेंट जवाब की हो गई है, तो वो उस चीज से नहीं अपने आप को निकाल पा रहे।
1: मिस, रिसर्च की फील्ड में भी टेक्नोलॉजी के असरात हो रहे हैं, अगर अच्छे हो रहे हैं, बुरे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, जरा उस पर भी रोशनी डाल।
2: जी बिल्कुल, असरात तो बेसिकली बहुत वे में हो रहे हैं, अच्छे भी हो रहे हैं, नेगेटिव भी हो रहे हैं। लेकिन अगर हम, क्योंकि हम इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं इफेक्ट्स की, अब रिसर्च जिस तरह पहले जमाने में होती थी कि आपको ऑथेंटिसिटी मिलती थी आपकी रिसर्च के अंदर, अब सिंपल क्या होता है क्योंकि आजकल जो चैट जीपीटी इतना एडवांस हो गया है वो आपको एक पेपर इंस्टेंट लिख के प्रोवाइड कर देता है।
1: ऐसे है,
2: इवन के जब पहले हमने रिसर्च करनी होती थी हमें एक प्रॉब्लम सर्च करने के लिए काफी दिन लगते थे कि हम किस प्रॉब्लम के सर्च करेंगे, किस प्रॉब्लम पे हमने काम करना है, किस प्रॉब्लम की हमने पेपर राइट अप करना है। लेकिन अब क्या होता है, अब प्रॉब्लम भी हमें चैट जीपीटी प्रोवाइड कर देता है, उसका सलूशन भी प्रोवाइड कर देता है, उसका राइटअप भी प्रोवाइड कर देता है। इससे नुकसान यह हुआ है कि हमारे पास, हमें पता नहीं है कि वो प्रॉब्लम एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही है या कितना इफेक्ट हो रहा है सोसाइटी के अंदर, हमें नहीं पता वो जो उसने राइटअप करके दिया उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, उसमें कितनी ट्रस्ट चीजें उसके अंदर, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, कितनी चीजें हमारे पास ट्रस्ट के काबिल नहीं है क्योंकि हमें सोर्सेज का नहीं पता कि चीजें वो कहाँ से लेके आ रहा है, क्या वो सोर्स ट्रस्टेबल है कि नहीं है।
1: बिल्कुल,
2: तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिसर्च है वो किसी हद तक इससे अफेक्ट हो जरूर रही है। अगर हम इसको हेल्पिंग मटेरियल यूज करें तो एक अलग बात है, लेकिन जो आजकल चल रहा है, जो ट्रेंड चल पड़ा है कि अगर आपने पेपर लिखना है तो चैट जीपीटी से लिखवा लो, अगर आपने कोई सलूशन चाहिए तो चैट जीपीटी से ले लो।
1: अच्छा मिस, अगर हम स्टूडेंट टीचर बॉन्ड की अगर बात करें तो बड़ा खूबसूरत एक रिलेशन ही पाया जाता है, तो आपको लगता है कि AI टूल्स ने इस बॉन्ड को भी इफेक्ट किया है?
2: जी बिल्कुल, एक्चुअली अगर हम बात करें AI टूल के इफेक्ट्स की, तो स्टूडेंट्स ने और टीचर के दरमियान जो रिलेशन होता है, जो रिस्पेक्ट का रिलेशन है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का रिलेशन है, वो बहुत हद तक उसको अफेक्ट किया और शायद मैं बोलूँगी कम भी कर दिया है। अब होता बस कि क्या है कि आपने कब नोट किया होगा कि जो हमारा टीचर में मिलता है तो हम रिस्पेक्टली अभी भी खड़े हो जाते हैं उनके रिस्पेक्ट में, लेकिन आज के स्टूडेंट इस तरीके से डील नहीं करते टीचर के साथ। अगर हम क्लासरूम की बात करें उनके बिहेवियर की, तो वो ये कहते हैं कि ये जो पढ़ा रहे ये तो हम चैट जीपीटी से पढ़ लेंगे, ये तो हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे, ये तो हमें इंटरनेट से मिल जाएगा। तो वो जो टीचर की वर्थ है वो बहुत हद तक डाउन गई है, या आप उसको कह लेंगे उसमें ड्रास्टिक चेंज आया है। स्टूडेंट ये एक्सेप्ट करने को, आजकल का स्टूडेंट ये तैयार ही नहीं है कि टीचर हमें कुछ लर्न भी करवा सकता है या हमें कोई नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है। उनकी माइंड में यही होता है कि ये जो पढ़ा रहे हैं हम चैट जीपीटी से पढ़ लेंगे, या ये जो बता रहे हैं हमें तो चैट जीपीटी मिनट में आंसर दे देगा। वो ये सोचते नहीं है टीचर एक मेंटोर है या एक गाइड के तौर पर हमारे सामने आएगा, वो बस ये कहते हैं हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे अच्छा तो हम चैट जीपीटी पढ़ लेंगे। और सिंपल उनके माइंड में ये होता है कि हमें ग्रेड लेने हैं इसलिए हमें टीचर के सामने ये क्लासरूम में बैठना है। वो एक नॉलेज गेनिंग वाला प्रोसेस वो तो मिस ही हो गया है। और रिस्पेक्ट की बात तो फिर अब मैं कहती हूँ ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि वो शायद इससे ज्यादा चैट जीपीटी को रिस्पेक्ट दे दें।
1: बिल्कुल सही। तो इस बॉन्ड के खराब होने से क्लासरूम इंटरेक्शन जो है उसका वो भी कम हो रही है या उस पर भी कोई मनफी असरात आ रहे हैं?
2: जी बिल्कुल। अगर मैं इसको बात करें कि अगर आप टीचर और AI टूल को अगर मिक्स करके डील करें तो शायद आपके सामने एक सुपर मेंटोर की ऐसे से एक चीज निकल के आए और ज्यादा आपको बेनिफिट्स हो। लेकिन हम सिर्फ चैट जीपीटी पे इंसार कर रहे हैं या स्टूडेंट जो आज का है वो सिर्फ उसी को लेके चल रहा है, और उससे फर्क ये होता है कि वो क्लास में सही तरीके से अटेंशन नहीं दे पाता, वो सही तरीके से लिसन नहीं कर पाता टीचर को, क्योंकि उसके माइंड में यही है कि इससे अच्छा तो मुझे चैट जीपीटी सिखा देगा।
1: उसने उस नॉलेज को गेन करके करना ही गया।
2: एग्जैक्टली वो कहता है इससे ये तो टाइम वेस्टिंग है, इससे अच्छा तो मैं चैट जीपीटी सीख लूंगा, मैं नेट से देख लूंगा, मुझे उनसे ज्यादा लर्निंग हो जाएगी। वो इस चीज को समझने की कोशिश भी नहीं करते कि कभी ऐसा सूरत हाल आती है कि जब आप चैट जीपीटी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं वो आपको दो या दो से ज्यादा फीडबैक प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो खुद भी कंफ्यूज होता है बेटर वन कौन सा है।
1: जी
2: अगर आपको पता ही नहीं है कि मैंने डिसीजन कैसे लेना है या मैंने कैसे थिंक करना है कि कौन सा डिसीजन बेहतर होगा, तो आप कोई भी उठा के ले आओ।
1: अच्छा, यही हाल आगे स्टूडेंट का है, वो खुद भी नहीं डिसाइड कर पाता कि विच वन इज बेटर।
2: एग्जैक्टली वो सोचने की कोशिश, अगर वो टीचर को सुने उसको पता हो कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या चाहिए उनको, शायद वो उस चीज को लेके अंडरस्टैंड कर पाए कि सोल्यूशन हमारा कौन सा बेटर वन है, ये अच्छा सोल्यूशन है कि ये बुरा सोल्यूशन है, इसमें क्या खामियां आ गई है। वो सिर्फ उठाता है कॉपी करता है पेस्ट करके कहता है ये बेस्ट सोल्यूशन है, और इसी बेस पे वो टीचर से आर्ग्यू भी कर रहे होते हैं कि नहीं मैं सामने जो आंसर निकाला था वो बेस्ट है, आप जो बता रही है वो नहीं ठीक।
1: बिल्कुल ऐसे ही। लिसनर्स, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। सुनते रहे FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 यूसीबी की दुनिया।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीबी की दुनिया। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इंस्टेंट प्रॉम्प्ट्स एंड मिसिंग थॉट्स की। हमारे साथ मौजूद हैं मिस मारिया नजीर, अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मिस, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी और AI टूल्स के यूज ने टीचर स्टूडेंट का बॉन्ड और क्लास इंटरेक्शन जो उनसी है वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट की है। तो इन सारी चेंजेस के बाद आपको लगता है कि टीचर्स भी इनसिक्योर फील करते होंगे?
2: Somehow कह सकते हैं, क्योंकि अब जिस तरह से स्टूडेंट बिहेव करता है क्लास में तो टीचर को उस तरह से वैल्यू नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी आ जाती है। सेकंड, टीचर जब कंपेयर करता है अपने आप को ChatGPT से तो वो ये सोचता है कि शायद उसके पास जो नॉलेज है वो इतना नहीं है कि वो टीचर स्टूडेंट को अपनी तरफ ग्रैब कर सके। तो कई टीचर ये फील करते हैं कि उनका नॉलेज जो है वो AI टूल से कम्पीट नहीं कर सकता या स्टूडेंट उन्हें रिप्लेसेबल समझने लगे हैं। तो ये काफ़ी एक डिसरिस्पेक्ट भी कह लें या आपके कॉन्फिडेंस में कमी का बायस भी कह सकते हैं आप उसको। ये इनसिक्योरिटी टीचर की कॉन्फिडेंस को हिट करती है किसी हद तक।

0: करूं या मैं देखूं जो आज की जनरेशन चल रही है उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की इतनी कोई खास कैपेबिलिटी या एबिलिटी नहीं है या क्रिटिकल थिंकिंग बहुत डाउन होती जा रही है। मैं कुछ पिछले दिनों में एक रिसर्च देख रही थी तो MIT के अंदर एक रिसर्च बेस इस तरह की हुई है कि वो कहते हैं कि हमने कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को या कुछ पार्टिसिपेंट्स को बिठाया, उसमें से अगर हमने क्रिटिकल या उनके माइंड का स्कैन किया उसमें से 83% ऐसे मेंबर्स थे जिन जो बेसिकली डायरेक्ट ChatGPT पे निसार करते हैं, उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग थी वो बहुत लो थी एज कम्पेयर टू अदर मेंबर्स की।
1: जी
0: होता बेसिकली ये कि वो उनके तहकीक में ये भी डिस्कस किया था कि हमने उनसे वो जो ChatGPT यूज़ करते हैं मेंबर्स, हमने उनसे क्वेश्चन पूछा एक सेकेंड पहले लिखे हुए प्रोग्राम का तो वो उसको मेमोराइज नहीं कर पा रहे थे, वो उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे थे। तो उनकी मेमोरी भी अफेक्ट होती है क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ, क्योंकि जब आपने एक चीज़ के ऊपर सोचना ही नहीं है, जब आपने उसको माइंड के अंदर रखना ही नहीं है, यूज करना ही नहीं है, तो फिर उसका फायदा ही नहीं है, वो आपकी मेमोरी भी कम से कम होती जाती है। और जो आजकल का डेवलपर है वो बेसिकली करता है क्या, वो जितने प्रॉब्लम या प्रोग्रामिंग होती है वो ChatGPT को देता है, वो उसको राइटअप करके दे देता है। अब वो राइटअप तक बात कैसे गई है, वो आउटपुट तक बात कैसे आई है, उसको बिल्कुल उस प्रोसेस का नहीं पता, उसको पता ही नहीं है कि वो आउटपुट जो ChatGPT एल्गोरिदम लिख के दिया है वो किस हद तक अफेक्टिव है और किस हद तक उसको एक्यूरेट आउटपुट दे सकता है या इससे बेहतर कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, क्योंकि सोचिंग स्लाइट नहीं है, वो उसी पर डिपेंड कर रहा है कि जो ChatGPT में दे दिया हमने कर लिया। तो इसलिए जो AI के काम जो सिर्फ है वो सजेस्ट करने की हद तक होना चाहिए, उसको हमने कैसे मोल्ड करना है, कैसे और मजीद एक्यूरेट बनाना है, ये हमारे हमारी थिंकिंग के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हम सोचेंगे हम हमें चीज का पता होगा तो हम उसको सर्च करेंगे
1: जी।
0: तभी तो हम उसको क्रिटिकली देखेंगे उस चीज को।
1: ऐसे
0: तो अगर आप बोलेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेबिलिटी इफेक्ट हुई है तो डेफिनेटली इफेक्ट हुई है इसके साथ और बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है।
1: बिल्कुल। अच्छा अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर जॉब्स में प्रॉब्लम सॉल्वर्स की वैल्यू ज्यादा होगी या प्रॉम्प्ट लिखने वालों की?
0: अच्छा इस चीज को मैं ऐसे देखती हूँ कि अगर आपको दोनों चीजें आती हैं तो आपकी वैल्यू बेस्ट है, लेकिन अगर आप किसी एक चीज पर डिपेंड करोगे तो शायद आप किसी न किसी टाइम पीरियड के पर जाके आप जीरो हो जाओगे। अगर आप ChatGPT डिपेंड करते हो सिर्फ, क्योंकि एक टाइम की पीरियड के बाद जाके वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ChatGPT भी जो है आपके पास उससे जो अगर आपने सोल्यूशन लेना है तो अगर आपको क्वेश्चन पूछना आएगा तो आपसे सोल्यूशन लोगे, अगर आपको एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना आएगा तो वो आपको एक अच्छी आउटपुट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ChatGPT को जैसा क्वेश्चन पूछोगे वो वैसा ही आपको आंसर प्रोवाइड करेगा। जब आपको प्रॉब्लम की डेप्थ का ही नहीं पता, आपको यही नहीं पता कि प्रॉब्लम है क्या और उससे आपको क्या आउटपुट चाहिए, तो आप उससे क्या पूछोगे वो आपको क्या ही आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। तो अगर हम बोलेंगे कि आपके पास दोनों स्किल्स अगर हों तो आप लोग मार्केट में या सोसाइटी में टेक्नोलॉजी की सोसाइटी के अंदर सर्वाइव कर सकते हो और बेहतरीन सर्वाइव कर सकते हो।
1: क्या यूजर ने AI टूल को सिर्फ एक टेक्निकल स्किल बना दिया है या इसके अलावा भी इसका कोई रोल है?
0: आजकल के जो यूजर हैं वो बेसिकली AI टूल को सिर्फ एक टेक्निकल स्किल या शॉर्टकट समझकर ही चल रहे हैं, क्योंकि उनको बस आउटपुट चाहिए, उनको सोल्यूशन चाहिए, उनका टाइम बच रहा है तो उसी पॉइंट पर लिखे। जहां अगर सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखने की बात है या आउटपुट लेने की बात है वो कहते हैं बस हमने एक लिखा हमें आउटपुट मिली हमारा काम खत्म, इतना ही हमारा काम। लेकिन असल में जो AI टूल का मकसद है ना वो सिर्फ टास्क को ऑटोमेट करना नहीं होता, बल्कि उसको क्रिटिकल थिंकिंग को, आपकी क्रिएटिविटी को, जो डिसीजन मेकिंग को जो सपोर्ट करना है उसको मजीद शार्प करना, बेसिकली अगर आप उसको सही तरीके से यूज करो। तो जब यूजर खुद नहीं सोचता कि AI का जो पूरा काम है या पूरा जो है प्रोसीजर वो कैसे हो रहा है, वो कैसे आउटपुट ला के दे रहा है, वो खुद से उस पर भरोसा कर रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर या हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के ऊपर। तो अगर हम ये दोनों स्किल्स और टूल को साथ लेके चलें तो शायद हम ज्यादा उससे अचीवमेंट हासिल कर सकें, ना कि सिर्फ हम उसको एक टेक्निकल टूल बना के या टेक्निकल स्किल बना के चलें, क्योंकि अकेली टेक्निकल स्किल कभी तक इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं जब तक आप उसके अंदर अपनी क्रिटिकल थिंकिंग या अपनी थिंकिंग नहीं ऐड करोगे।
1: बिल्कुल सही। अगर हम आज की सारी डिस्कशन को सम अप करें तो ये जो हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं इनको किस तरह हम टैकल कर सकते हैं?
0: एज अ टीचर मैं बता सकती हूँ कि अगर आपका जो स्टूडेंट है वो जब ChatGPT यूज करके आपको आंसर ला के दे रहा है तो बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप उससे काउंटर क्वेश्चन करें,
1: वाइवा ले लें।
0: एग्जैक्टली वाइवा ले लें, उससे काउंटर क्वेश्चन करने के जो आप सोल्यूशन लेके आए हो ये कैसे आए हो, इसके अलावा अगर हम इस प्रॉब्लम को ऐसे चेंज कर दें, माइनस से चेंज कर दें तो उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो शायद वो सोचने में मजबूर हो जाए कि नेक्स्ट टाइम जब मैं क्लासरूम में जाऊंगा तो ये प्रॉब्लम से रिलेटेड मुझसे जो सोल्यूशन लेके जा रहा हूँ इससे मुझसे क्वेश्चन हो सकता है,

0: तो मैं इसको थोड़ा देख लूँ या थोड़ा सोच लूँ इसके बारे में कि कैसे आउटपुट आ रही है। अगर हम क्लासरूम में डिस्कशन रखें, जो हमें चैट जीपीटी ने सोल्यूशन दिया उसी के ऊपर डिस्कशन रख दें कि ये और मजीद बेटर कैसे हो सकता है या इसकी क्या खामियां इसके अंदर, या हम उसको थोड़ा सा लेबोरेट या एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, तो शायद हम स्टूडेंट्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव या ज़्यादा एनवायरनमेंट को हम इंट्रैक्टिव बना सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो ज़्यादा अटेंशन दे सकते हैं उस चीज़ की तरफ।
1: लेकिन मिस, अगर डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों के साथ तो वो वहीं पे फौरन अपने मोबाइल खोलते हैं और इंस्टेंटली पूछने शुरू कर देते हैं।
0: जी बिल्कुल, मैं
1: मसला एक
0: मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इस बात से, क्योंकि ये चीज़ मैं भी फेस करती हूँ क्लासरूम के अंदर। तो उसका तो ये हो सकता है कि हम बाय फोर्स जो स्टूडेंट्स के सेलफोन है वो फॉर टाइम बीइंग 10-15 मिनट के लिए साइड पर रखवा दें कि ये टास्क है आपका, आपने सेलफोन की तरफ देखना भी नहीं है।
1: एक बेहतर सोल्यूशन है,
0: ये एक बेहतर और बेस्ट सोल्यूशन होगा शायद उनके लिए, नहीं शायद उनके फ्यूचर के लिए बेस्ट सोल्यूशन हो। ठीक है, उससे ये क्या होगा कि अगर उनके पास चैट जीपीटी नहीं होगा, अगर हम उस पर लिमिटेशन लगा देंगे कि आपने इंटरनेट को नहीं देखना, आपने चैट जीपीटी टूल्स को नहीं देखना या एआई टूल्स को नहीं एक्सप्लोर करना, उसको उसके बगैर आपने आंसर प्रोवाइड करना, फिर देखते हैं कि आपका आंसर कितना एक्यूरेट आता, कितना रिजेम्बलेंस करता है आपके एआई के आंसर के साथ, शायद वो थोड़ा सा सोचने में दूर हो जाए।
1: इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का इख्तितामी लम्हात आ चुके हैं। हम अपनी ऑनरेबल गेस्ट मिस मारिया का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मिस, बहुत शुक्रिया आपका।
0: थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपके साथ डिस्कशन करके,
1: बहुत अच्छा लगा आपका यहाँ आना। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से हमारे लिसनर्स को ये बात समझ आ गई होगी कि AI और न्यू टेक्नोलॉजी एक पावरफुल टूल है, लेकिन अगर हम सिर्फ आउटपुट लेने तक लिमिटेड हो जाएं और क्वेश्चनिंग या सोचने का प्रोसेस स्किप कर दें तो हम सिर्फ कंज्यूमर बन जाते हैं, क्रिएटर्स नहीं। टेक्नोलॉजी से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम उस पर पूरा डिपेंडेंट हो जाएं तो क्रिटिकल थिंकिंग एक लॉस्ट आर्ट बन जाएगी। हमें चाहिए कि AI को अपनी सोच के मुतबादिल ना बनाएं, बल्कि उसे एक थिंकिंग कंपेनियन की तरह यूज करें। अगली एपिसोड तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। सुनते रहें FM 92.6 UCB की दुनिया। अल्लाह हाफिज़।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

www.musicfeed.edu.ek FM 92.6 Live Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

0: यूनिवर्सिटी फंडेड होते हैं, मतलब प्रोग्राम ना, ये जो बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, जो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें ये बहुत कॉमन है. इसके अलावा जो मैक्स स्कॉलरशिप है, ये दो तरह की होती है. मैक्स स्कॉलरशिप एक होती
1: है. ये क्योंकि अब प्रोग्राम में म्यूजिक का वक्त हो गया, ब्रेक हम लेने जा रहे हैं, तो ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि मैक्स और एडीपी और यूनिवर्सिटी के जो अपने स्कॉलरशिप्स हैं उनको किस तरह से, कब आते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स उसमें हिस्सा ले सकते हैं और कैसे अप्लाई करना होता है. तो सामिन हमारे साथ रहिएगा, म्यूजिक ब्रेक के बाद हम ये डिस्कस करने वाले हैं. जी,

0: 100 स्कॉलरशिप पर, तो वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं? तो डॉक्टर साहब पहले मैक्स्ट के बारे में बताइएगा कि मैक्स्ट कितनी तरह का होता है और कैसे हासिल किया जा सकता है स्कॉलरशिप?
1: जी ठीक है, मैक्स स्कॉलरशिप ये दो तरह की होती है, एक एम्बेसी फंडेड होती है, एम्बेसी रिकमेंडेड सॉरी, और एक होती है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड।
0: सही,
1: एम्बेसी रिकमेंडेड मैक्स स्कॉलरशिप ऐसे अवेल होती है कि हर साल जैसे जापानीज एम्बेसी जो इस्लामाबाद में है वो एक कॉल ओपन करती है कि अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें। मोस्टली जो मैक्स स्कॉलरशिप पाकिस्तान से है ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, मास्टर स्टूडेंट्स के लिए और पीएचडी स्टूडेंट के लिए। तो वो हर साल मेरे ख्याल में मिड ऑफ द ईयर जो है वो ओपन करते हैं कॉल, और उस पर स्टूडेंट्स जो है अपने रिसर्च प्रपोजल और एप्लीकेशन का पूरा एक जो होता है वो सेटअप वो एम्बेसी की वेबसाइट से डाउनलोड भी की जा सकता है सारी इंस्ट्रक्शंस के साथ। तो ये तो हो गया एम्बेसी चैनल।
0: ये डॉक्टर साहब ये जो यूनिवर्सिटी सॉरी एम्बेसी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप है ये कोई खास यानी अंडर ग्रेड लेवल पर, ग्रेड लेवल पर, किस लेवल पर ये अवेल किया जा सकता है?
1: अंडर ग्रेजुएट मैंने जैसे पहले कहा था, अंडर ग्रेजुएट, मास्टर और पीएचडी के लिए।
0: सही
1: जी,
0: तो और, ये सारों और तमाम डिसिप्लिन्स के लिए होता है ये?
1: बिल्कुल तमाम डिसिप्लिन्स के लिए होता है, लेकिन यहाँ से पाकिस्तान से ज्यादातर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जाते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि उनको एम्बेसी ज्यादा करती है सपोर्ट कि वो उनको ज़्यादा नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स तकरीबन वेरी करते हैं हर साल, कोई एम्बेसी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप्स के 20-15 के करीब स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पाकिस्तान से जाते हैं। तो उनमें से तकरीबन जो है वो इंजीनियरिंग से जो लोग हैं
0: ज्यादा।
1: जी जी जी, तो बाकी अभी एक ट्रेंड चेंज हुआ है, बायोमेडिकल साइंसेज से भी जो स्टूडेंट्स हैं वो जा रहे हैं।
0: सही
1: जी, तो ये एम्बेसी है। बाकी दूसरा चैनल होता है यूनिवर्सिटी चैनल, उसमें ये होता है कि यूनिवर्सिटी के जो हर जापान में हर यूनिवर्सिटी का अपना इंटरनेशनल ऑफिस है जो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है, तो उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं विद रिसर्च प्रपोजल, मोटिवेशन स्टेटमेंट, और हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके वहाँ से एप्लीकेशन भी डाउनलोड की जा सकती है, सब में मौजूद है। तो एप्लीकेशन फिल करके, बल्कि ये होता है कि पहले पूछ लिया जाता है उनको इंटरनेशनल सेंटर को ना कि मेरा ये इंटरेस्ट है, जैसे मैंने किया था कि मेरा पीएचडी में इंटरेस्ट है, तो मेरी ये मैंने कर लिया हुआ है, मिसाल के तौर पर अंडर ग्रेजुएट मैंने कंप्लीट किया हुआ है और एक साल मैंने काम किया हुआ है हॉस्पिटल में, तो मैं आगे पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता हूँ, ये मेरा रिसर्च इंटरेस्ट है। तो वो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप एक जो है पूरा हमारी वेबसाइट पर जाके, उन्होंने मुझे लिंक भेजा कि इस पर जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उसको फिल करें और हमें भेजें। अच्छा, वो जो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप है जैसे जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, वो फिर आगे आपकी पूरी एप्लीकेशन का जो एक फाइल होती है पूरी, उसको प्रोफेसर को भेजते हैं आगे। फिर प्रोफेसर अगर ओके कर दे तो आपको वो मैक्स्ट की स्कॉलरशिप के लिए मैक्स्ट को एप्लीकेशन भेजते हैं कि इस स्टूडेंट को हमने हम रिकमेंड कर रहे हैं, इसीलिए इसको यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप कहते हैं। तो मैक्स्ट जो है वो अप्रूव करता है, जब यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर ओके हैं तो मैक्स्ट कभी भी इनकार नहीं करता, कभी ऐसा नहीं होता, बहुत कम है, रेयर है, मे बी मैंने कभी सुना नहीं है कि ऐसा कभी हुआ। तो बेहतर ये है, इसके लिए बेहतर ये है कि जिस यूनिवर्सिटी में अगर आपने यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, प्रोफेसर को अप्रोच कर लिया जाए, क्योंकि वो आपकी एक ऑथेंटिकेशन हो जाती है कि ऑलरेडी आपने उसको ईमेल एक्सचेंज में अपना अपना सब कुछ बता दिया हुआ है। बेहतर ये है कि प्रोफेसर को बड़ी एक कंसाइज ईमेल लिखें, उसमें अपनी सीवी और मोटिवेशन लेटर ज़रूर लिखें। जापानीज प्रोफेसर एक पेज का मोटिवेशन लेटर पसंद करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, और सीवी भी बड़ी कंसाइज, और बेसिकली अगर आप सीवी बना रहे हैं तो बस अपनी एक दो जैसे आपने बीएससी की है उसके बाद एमएससी, मैट्रिक वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो उसमें यह है कि सीवी में आप अपना ज़्यादा रिसर्च का एक्सपीरियंस लिखें। रिसर्च एक्सपीरियंस यहाँ पे स्टूडेंट जो पाकिस्तान में भी करते हैं, जैसे किसी प्रोफेसर के साथ या टीचर के साथ कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट किया है, किसी कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, प्रेजेंट नहीं भी किया तो फिर भी उसको मेंशन करें। अगर वैसे ही आपकी यूनिवर्सिटी में कोई छोटी मोटी कॉन्फ्रेंस है उसमें आपने थोड़ा सा भी पार्टिसिपेट किया तो ज़रूर लिखें, क्योंकि वो आपकी एक एक्टिविटी है। तो अपनी सीवी जो आप किसी जापानीज प्रोफेसर को भेज रहे हैं, कम से कम उसमें 3-4 चीज़ें आप रिसर्च से रिलेटेड ज़रूर लिखें, क्योंकि बेसिकली आप जापान में जा ही रिसर्च के लिए रहे हैं। तो जब तक आप अपनी वही पाकिस्तानी सीवी जिसमें आप मैट्रिक से लेके बीएससी तक सारा कुछ लिख देते हैं, उसके बाद आप लिख देते हैं कि मुझे फलानी फलानी पंजाबी इंग्लिश आती है, उसका कोई जो है ना वो इफेक्ट नहीं होता। तो बेहतर ये है कि बीएससी जो अंडर ग्रेड के स्टूडेंट हैं उन्होंने अंडर ग्रेड में भी कोई ना कोई रिसर्च प्रोजेक्ट किया होता है छोटा मोटा, उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करें।
0: फंडामेंटल ऑफ रिसर्च पढ़ते हैं तो हाँ। प्रपोजल एंड पे टीचर्स लिखवा लेते हैं।
1: जी प्रपोजल लिखवा लेते हैं, और इसके अलावा
0: या अपने किसी प्रोफेसर अपने किसी प्रोजेक्ट में डेटा कलेक्ट करवा लेते हैं या किसी वॉलंटियर ले लेते हैं, कोडर ले लेते हैं।
1: जी
0: इस तरह की एक्टिविटीज अमूमी तौर पर हमारे स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं,
1: लेकिन वो सोचते हैं कि ये बड़ी माइनर चीजें हैं, हमें नहीं लिखना चाहिए ना, लेकिन ये माइनर चीजें बिल्कुल नहीं है। जापान में ये बहुत बड़ी चीजें हैं और इसको जरूर लिखना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा ये तो आपने एक अच्छी चीज इंडिकेट की, उसके अलावा छोटे मोटे कोर्सेज जो आपने किए होते हैं ऑनलाइन और या फिर यूनिवर्सिटी में, इसके अलावा जो आपने सब्जेक्ट पढ़े होते हैं उनको भी डिटेल में लिख सकते हैं,
0: या वर्कशॉप्स या सेमिनार्स अटेंड किए होते हैं।
1: हाँ जी, अच्छा, तो ये है तरीका प्रोफेसर को अप्रोच करने का। तो प्रोफेसर को ईमेल करके एक दफा उससे मतलब कि थोड़ी सी ना हो जाए, तो उसके बाद जब आपकी सीवी उसके पास जाएगी रिकमेंडेशन के लिए तो वो फौरन से अप्रूव करेगा।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, एज मैटर करती है, मतलब आप कोई अपर लिमिट या लोअर लिमिट है इसमें?
1: हाँ, देखें जो मैक्स स्कॉलरशिप है इसके लिए एज डज मैटर। मास्टर के लिए मेरे ख्याल में 36 है, समथिंग लाइक दैट, मुझे अभी भूल गया लेकिन यही है 36। और जो PhD के लिए है मेरे ख्याल में 40 ईयर्स है, कि 40 ईयर्स के बाद आप मैक्स के लिए स्कॉलरशिप नहीं, मैक्स स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जी उसके लिए उसका हल जो है वो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप जो हैं वो हैं, वो मैक्स नहीं लेकिन यूनिवर्सिटी की अपने जो अपने बजट से यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है। तो मैक्स का तो ये तरीका है कि दो तरह की स्कॉलरशिप हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक एम्बेसी चैनल है, सीधा एम्बेसी की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ पर सारा डेटा मिल जाएगा आपको, हर चीज़ मिलेगी। दूसरी ये है कि यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड, यूनिवर्सिटी को अप्रोच करें। जापान में यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल ऑफिस जो है वो सेम डे में आपको ईमेल का रिप्लाई करेगा, ये उनकी बात है। तो आप हेजिटेट बिल्कुल ना करें, अगर किसी स्टूडेंट ने जापान एजुकेशन के लिए जाना है, मास्टर और PhD ये तो हॉट फेवरेट है, ज़रूर जाएं और यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ऑफिस से कॉन्टेक्ट करें। हर यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल ऑफिस है जो
0: पोस्ट डॉक्टरेट में भी मैक्स एंटरटेन करता है या नहीं?
1: जी, पोस्ट डॉक्टरेट में मैक्स जो है वो तो इतना फेमस नहीं है, लेकिन इनके दूसरे प्रोग्राम हैं जैसे कि GSPSS जो पोस्ट डॉक्टरल को एंटरटेन करते हैं, और बहुत सारे इनके नंबर भी बहुत ज्यादा होते हैं, हर साल तकरीबन 120 के करीब हैं जो पोस्ट डॉक्टरल GSPSS पे आते हैं। तो इस पे भी इसका बड़ा आसान तरीका है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है।
0: डॉक्टर साहब, बड़ी ही इंटरेस्टिंग, आपने बिल्कुल इन्फॉर्मेशन लेडन किस्म का ये हमारा सेगमेंट था। तो अभी हम लेने जा रहे हैं म्यूजिक ब्रेक, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे मजीद जो आपने बताया। हमारे साथ रहिएगा।

0: Are you tired of feeling lazy and bored? Don't worry. That's why we are here. We are UCP Ki Duniya, FM 92.6.
1: जी सामिन, प्रोग्राम है मंजिल और मैं हूं आपका मेज़बान अली अशरफ और आप इसे सुनते हैं 92.6 पर। और मंजिल में डॉक्टर इश्तियाक अहमद से गुफ्तगू चल रही है और डॉक्टर इश्तियाक अहमद हमें बता रहे हैं कि हम किस तरह फुली फंडेड अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करके जापान जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में ना सिर्फ जा सकते हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। तो मैक्स्ट के बारे में बड़ी डिटेल बताया डॉक्टर साहब। ब्रेक पर जब हम जा रहे थे तो GSPS का नाम लिया था, हमारे पास वक्त क्योंकि बिल्कुल थोड़ा रह गया, तो आप मुख्तसर बताइएगा कि ये क्या स्कॉलरशिप है और जो क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत सारे PhDs हैं, तो PhD करने के बाद लोग कैसे उसको अवेल कर सकते हैं?
2: बिल्कुल, GSPS स्कॉलरशिप जो है ये लेने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट करना होता है अपनी फील्ड से रिलेटेड। तो ये इतनी कम्पिटेटिव नहीं होती जितनी के PhD या मास्टर लेवल पे मतलब के जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो होती हैं। तो GSPSS जो है वो PhD स्टूडेंट्स को भी अवेल करती है, सपोर्ट करती है सॉरी, और ज़्यादातर ये पोस्ट डॉक्टरल के लिए होती है, 2 साल के लिए होती है और 3 साल के लिए भी होती है, टोटल 24 मंथ और 36 मंथ्स के लिए होती है GSPSS। तो इसका बेहतर हल ये लेने के लिए जितनी भी नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं जापान में उनके प्रोफेसर को अप्रोच किया जाए। इसमें कोई इतना बड़ा रिसर्च प्रपोजल नहीं लिखना होता, प्रोफेसर अगर आपकी CV देख के सेटिस्फाई है और आपने उसको अगर वो इंटरव्यू लेता है तो इंटरव्यू में उसको आपने सेटिस्फाई किया है तो GSPS की कोई इतनी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, मोस्टली ये सारी जापानीज़ में होती है। अगर प्रोफेसर आपको एक्सेप्ट कर ले, अगर आप पाकिस्तान से जा रहे हैं तो ये जो यूनिवर्सिटी का अपना ऑफिस होता है या प्रोफेसर की पर्सनल सेक्रेटरी होती है वो एप्लीकेशन वगैरह करती है, सारा अप्लाई वो खुद करती है, आप कुछ सिग्नेचर्स करने होते हैं बस, जो कुछ कंसेंट फॉर्म जो होते हैं उन पे। तो इसका तरीका बहुत आसान है कि सिर्फ प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं लेकिन प्रोफेसर की रिकमेंडेशन के बाद। तो ये पोस्ट डॉक्टरल पाकिस्तान से बहुत कम जाते हैं, अभी जो पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम पे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो जापान में हैं तकरीबन 6-7 ही हैं जो पाकिस्तान से गए हैं। तो जो लाइफ साइंसेज हैं और मेडिकल साइंसेज हैं उनमें ज़रूर जाएं, और इंजीनियरिंग के तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले ही वहाँ पर मौजूद हैं।
1: बिल्कुल ठीक है। एक डॉक्टर साहब हम बात पूछना मैं भूल गया कि स्कॉलरशिप के सीजन होते हैं, ये मैक्स्ट का कोई है कि कभी भी आ जाता है या कोई
2: नहीं, नहीं।
1: मंथ्स हैं?
2: हाँ,
1: ताकि कोई से अगर टारगेट करना चाहे तो वो कैसे किन मंथ्स में प्रिपरेशन है, कहाँ पे ये ऑफर होते हैं?
2: बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, और इसके लिए स्टूडेंट्स को कम से कम 6 मंथ पहले अपनी प्रेपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। मतलब कि मैं अगर अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो साल में 2 सेशन है, एक स्प्रिंग है एक फॉल है। तो फॉल में मिसाल के तौर पर अगर किसी ने एडमिशन लेना है तो उसको जनवरी फरवरी में अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके यूनिवर्सिटी के जो इंटरनेशनल ऑफिस है या सेंटर है या प्रोफेसर को अगर अप्रोच करना है तो 6 महीने पहले अप्रोच करें, तब जाके वो पूरा प्रोसेस होगा।
1: क्योंकि नेक्स्ट किन किन महीनों में ऑफर होगा?
2: हाँ ठीक है, जो एम्बेसी रिकमेंडेड है एम्बेसी की अपनी डेट्स हैं, वो मेरे ख्याल में मिड ऑफ द ईयर होती है, अभी ओपन होने वाली है या हो चुकी है मेरे ख्याल में ऑलरेडी। और जो यूनिवर्सिटी की है, हर जापान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं तकरीबन साल में 2 इनटेक हैं। तो 2 इनटेक का मतलब ये है कि अगर आपने फॉल में जाना है तो आपको जनवरी फरवरी या दिसंबर में अपना यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट वगैरह शुरू कर देना चाहिए। तो 6 महीने का जो है ना कम से कम होना चाहिए गैप
1: प्रोसेसिंग टाइम।
2: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, 6 महीने का मिनिमम।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ADP की आप बात कर रहे थे, ये स्कॉलरशिप क्या है और किस तरह से?
2: ADB असल में एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्कॉलरशिप है जो मास्टर और PhD को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और ये स्कॉलरशिप जो है अभी तक ADB के जितने भी स्टूडेंट मैंने वहां पे पाकिस्तानी देखे हैं लकीली वो इंजीनियर्स हैं।
1: अच्छा
2: जी, तो उनके लिए ये बड़ा एक फेवरेट स्कॉलरशिप है अगर ये इस पे अप्लाई करें। ADB की अपनी वेबसाइट है एशियन डेवलपमेंट की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, और असल में एडीबी ने कुछ डेजिग्नेटेड यूनिवर्सिटी है उनकी, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो है, सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो है, इसके अलावा उनकी वेबसाइट पे चार पांच और नेशनल यूनिवर्सिटी हैं। तो ये है कि जब आप एडमिशन सेंटर में, सॉरी इंटरनेशनल सेंटर में, यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल सेंटर है, उसको अप्रोच करते हैं तो उनको बताएं कि मैंने एडीबी के लिए अप्लाई करना है। तो एडीबी के लिए पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान एडीबी का हिस्सा है, और तकरीबन मैंने जो देखा है 6-7 स्टूडेंट्स जो हैं वो हर साल एडीबी स्कॉलरशिप अवेल करते हैं। और इसका सिंपल वही जो प्रपोजल वगैरह और एक रिकमेंडेशन लेटर और अपनी मोटिवेशन स्टेटमेंट जो होती है वो बनाना ज़रूरी होती है, वो सारा पूरा एक पैकेज बनाना पड़ता है एप्लीकेशन का। तो एडीबी की वेबसाइट पे मेरे ख्याल में पहले यूनिवर्सिटी को अप्रोच करके प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है, जो एक पार्ट ऑफ एप्लीकेशन है, मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है उसके साथ। तो एडीबी की मेरे ख्याल में साल में एक ही दफ़ा ओपनिंग होती है, मंथ मुझे याद नहीं है कि कौन सा मंथ होता है, क्योंकि मैंने मैक्स की ली तो बस मैं बस मुझे वो जो है ज़हन में, और इसके अलावा उसकी डेट्स नहीं याद मुझे। तो मेरे ख्याल में इसमें चांसेस अच्छे होते हैं, खास तौर पे जो मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं। तो वेबसाइट पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मौजूद है उनके एप्लीकेशन का तरीका भी।
1: डॉक्टर साहब बिल्कुल हम प्रोग्राम के अख्ताम पे पहुंच गए हैं। जो लोग स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, बाहर पढ़ना चाहते हैं, या ओवरऑल जनरली जो हमारे लिसनर सुन रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है?
2: मेरा मैसेज ये है कि फ़ौरन ज़रूर जाएँ और स्कॉलरशिप लेके जाएं। दूसरा ये है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि जब भी आप प्रोफेसर को ईमेल लिखें, प्लीज़ देखें कि टाइम देख लें, आप इतनी एफर्ट कर रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। मिसाल के तौर पर आप जापान किसी प्रोफेसर को ईमेल लिखने जा रहे हैं तो देखें कि वहाँ पे क्या टाइम है, ताकि वो आपकी ईमेल देख ले। एक प्रोफेसर को दिन में मेरे ख्याल में हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स आती हैं, तो प्रिपेयर रहें। ऐसे ही ईमेल फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको अपना भी टाइम ज़ाया करेंगे और प्रोफेसर का भी टाइम ज़ाया करेंगे। और जापान एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है रिसर्च के लिए और एजुकेशन के लिए भी। तो मेरा यही आपसे, आप सब, आपको मैसेज है कि जापान ज़रूर जाएं।
1: बहुत ज़बरदस्त, बड़ा सिंपलिस्टिक वे में डॉक्टर इश्तियाक ने सारी चीज़ों को समअप किया, और हमने कोशिश की कि एक बहुत बड़ा ये टॉपिक है, एक मैक्स्ड को ही अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो ये कई घंटों में ये एक्सप्लेन हो सकता है। तो कोशिश की कि हम ये दरिया को कुजे में बंद कर सकें। आपके कुछ सवालात हैं, आपकी क्वेरीज हैं, तो अपना फीडबैक आप हमें ज़रूर दे सकते हैं। अगले हफ्ते हम किसी और गेस्ट के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 96.2 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

www.musicfeed.edu.pk. FM 92.6 Live Station of the Nation.

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

www.musicfeed.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Number one radio station, FM 92.6, UCP ki duniya.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। हमारे साथ मौजूद हैं सर अली। सर, हम बात कर रहे थे कि लिटरेचर की और स्टूडेंट्स के, आपने बताया कि काफ़ी परसेंटेज कम है, तो आपके ख्याल में कि जो बच्चे लिटरेचर पढ़ते हैं या जिनको शौक है या जिनकी हॉबी है, उनके लिए कितना ज़रूरी है कि वो इसको अपनी फील्ड बना लें या वो इसको एज अ हॉबी रखें, और अगर उनके एक्सपर्टीज़ किसी और सब्जेक्ट में तो ये वो वहीं पर जाएँ?
2: अच्छा सर, मैं जो बच्चों को बताता हूँ, मैं उन्हें ये बताता हूँ कि देखें, आपका जो पैशन है, आपका जो इंटरेस्ट है, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि आप अगर साइंसेस में चले जाते हैं ये सोच के कि इसका स्कोप है, लेकिन आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपका कोई पैशन नहीं है, आप उसमें कोई इनोवेशन नहीं लेके आ सकते, आप तो कुछ नहीं ना इन्वेंट कर सकते। आप लेबॉरेटरीज में जाके भी काम खराब ही करेंगे, आप धमाके ही करेंगे वहाँ पर जाके। सिर्फ अगर आप ये सोच के गए हैं कि पूरी दुनिया इस तरफ जा रही है, अगर आपका शौक नहीं है तो आप साइंसेस में भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। क्योंकि आप चलें, आप अपनी डिग्री कर लेंगे, जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप जाएंगे आप क्या करेंगे? आपको किसी लेबॉरेटरी में वो आने को कहते हैं, व्हाट विल यू डू ओवर देयर? आप कोई चीज़ बना सकते हैं? आप कोई इम्प्रोवाइज कर सकते हैं? कुछ आप नहीं कर सकते। एक तो हमारे यहाँ आई थिंक मसला सबसे बड़ा ये है कि हम लोगों को लगता, हर शख्स को लगता है कि उसकी ही फील्ड सारा कुछ है, और दूसरा जो शख्स है उसका तो एक, उसकी फील्ड का बड़ा लिमिटेड स्कोप है। इंजीनियर्स डॉक्टर्स को ये कह रहे होते हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर्स को ये कह रहे होते हैं, लिटरेचर वाले इंजीनियर्स को ये कह रहे होते हैं, इंजीनियर्स लिटरेचर वालों को कह रहे होते हैं, कंप्यूटर साइंसेज वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को कह रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स कंप्यूटर साइंसेज। आप जब किसी फील्ड में जाते हैं सही तरह से, विद पैशन, विद इंटरेस्ट, फिर आपको पता चलता है कि हर फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा गहरी है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें कितने इंटरेस्टेड हैं, आप उसमें कितने पैशनेट हैं, आप उसमें जो है वो क्या चीज़ नई लेकर आते हैं। तो आपका भी नाम होगा, आप कंट्रीब्यूट करेंगे उस फील्ड में भी, जो है वो चेंजेस आएंगी। स्कोप लोग खुद बनाते हैं, स्कोप ऐसे तो नहीं बन जाता कि स्कोप है चलो चले। स्कोप बनता है जब किसी फील्ड में इनोवेशन होती है, किसी फील्ड में काम हो रहा होता है। वो काम कौन लोग करते हैं? वो वही लोग करते हैं ना जो कि इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं। स्कोप खुद तो नहीं बन जाता कि ये एक फील्ड आई है, इसका खुद ही से स्कोप बन गया है, सारे चलो इसकी तरफ। स्कोप वो लोग बना रहे हैं जो उस फील्ड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपका इंटरेस्ट ही नहीं है साइंसेज में, आपने चले मार्क्स अच्छे ले लिए, आपका हो गया एडमिशन, अब फिर क्या करेंगे आप? डिग्री ख़त्म करने के बाद आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल, मेरे ख्याल में कि अब 2025 में ये रेशो काफ़ी कम हो भी गई है कि अब बच्चे आते हैं आर्ट्स की तरफ और उनको पता चल रहा है कि नहीं, सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर एक पेशा नहीं है, और भी बहुत मुख्तलिफ पेशे हैं। पर आपको नहीं लगता कि अगर एक बच्चा है जिसकी हॉबी है सिर्फ लिटरेचर पढ़ना, वो शौक के लिए पढ़ता है, जब उस पर एक सब्जेक्ट मुसल्लत हो गया, मुसल्लत इस सेंस में कि अब उसको पता है कि मैंने यही पढ़ना है और इसी में ही आगे जाना है, तो उसका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा वो, क्योंकि वो पेपर्स का प्रेशर, पहले वो शौक पढ़ रहा था लेकिन अब वो एक मजबूरी में कर रहा है, तो ये कैसा इम्पेक्ट आएगा उस स्टूडेंट पर या उस बच्चे पर जिसको शौक था?
2: अच्छा, मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूँ कि आपका जो इंटरेस्ट एरिया है ना, वो कभी भी मत छोड़ो। और इसीलिए मैं तो शुरू के सेमेस्टर्स में बच्चों को बता देता हूँ कि लिटरेचर में इतना कुछ है, इतने सब जॉनर्स हैं, पार्टिशन लिटरेचर है, एनवायरमेंटल लिटरेचर है, चिल्ड्रंस लिटरेचर है, मेडिकल लिटरेचर है, फैंटेसी लिटरेचर है, गॉथिक लिटरेचर है, अमेरिकन लिटरेचर अलग है, फिर उसमें अफ्रो अमेरिकन अलग है, फिर पेंडेमिक लिटरेचर और है, पेंडेमिक में कोविड लिटरेचर और है। तो इतने जब आप बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएंगे ना कि ये कुछ है, फूड लिटरेचर है, मेमोरी स्टडीज़ है, ट्रॉमा स्टडीज़ हैं, क्या कुछ नहीं है, हर चीज़ पे कहानियाँ लिखी जा चुकी हैं। हम बच्चों को ये जब आप उन्हें बताएंगे ही नहीं कि इतना कुछ है, इतनी वैरायटी है, तो बच्चों को तो यही लगेगा कि बस पता नहीं हम क्या करें, हम कहाँ फंस गए हैं। आपने बच्चों को ये बताना होता है कि ये सारे एवेन्यूज़ हैं, अब आप देखो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, फिर आप उसको जो है अपना एरिया बना के आगे परसू करो। उसमें बच्चा शौक से यूँ नहीं पढ़ेगा, ठीक है? जब आप उसको बताएंगे कि लिटरेचर जो है वो सिर्फ वर्ड्सवर्थ है, शेक्सपियर या कीट्स नहीं है, लिटरेचर में आपका बंगाली इंग्लिश लिटरेचर भी है, आपका पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर भी है, आपका इंडियन इंग्लिश लिटरेचर भी है, आपके चाइनीज राइटर्स लिख रहे हैं, कोरियन, अब ये जो के पॉप और कोरियन कितना पसंद है बच्चों को, आप जब इन बच्चों को ये बताएंगे कि आपका कोरियन लिटरेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका जो नोबेल प्राइज मिला है लेटेस्ट, वो एक कोरियन राइटर को मिला है, वो पढ़ेंगे नहीं उसको? वोंट दे बी एक्साइटेड? दे विल बी। तो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द टीचर्स एज वेल कि वो बच्चों के सामने कितने एवेन्यूज खोल के रख रहे हैं और बच्चों को कहाँ से जो है वो स्पार्क मिल रहा है।
1: बिल्कुल, मैं यही बात करना चाह रही थी कि आपने बात की कि डिपेंड्स ऑन टीचर, तो ये कितना डिपेंड करता है टीचर पे कि उसने, मेरे ख्याल में कि एक टीचर ही एक सब्जेक्ट फेवरेट बनाता है और एक टीचर ही एक सब्जेक्ट से दिल उठा देता है। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे एक मैथ के टीचर थे, तो उनकी वजह से मैंने दोबारा कभी मैथ नहीं पढ़ा। तो कितना ज़रूरी है कि टीचर का कि वो एक बच्चे को उस तरह पढ़ाए कि उसको वो सब्जेक्ट बोझ ना लगे, वो सिर्फ उसके फाइनल्स या मिड्स तक ना रह जाए।
2: अच्छा, इसमें मुझे लगता है कि ना एक मसला ये है कि जो हम टीचिंग प्रोफेशन को जिस तरह से लेते हैं, मतलब अगर एक मैथ्स का टीचर है ना, तो आप ये देखिएगा कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो एक्चुअली ये कहते होंगे कि हम मैथमेटिशियंस हैं या मैथमेटिशियंस बनना चाहते हैं, वो सिर्फ मैथ्स के टीचर होंगे। उसकी वजह यह है क्योंकि हम लोग टीचिंग के साथ क्या करते हैं कि हमें और कुछ नहीं मिल रहा, चलो बच्चे पढ़ाने लग जाओ। जब इस तरह के लोग टीचिंग में जाएंगे तो फिर वो बच्चों का दिल उठेगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है उस वक्त टीचर, वो खुद फ्रस्ट्रेट हुआ हुआ है क्योंकि उसको कहीं और मौका नहीं मिले, और वो फिर फ्रस्ट्रेशन जो है वो स्टूडेंट्स पे निकलती है आपकी। तो वो आई थिंक इट हैज टू डू विद हाउ वी टेक टीचिंग एज अ प्रोफेशन। हम लोगों ने तो उसको बहुत ही जो है वो एक डिसगस्टिंग अप्रोच है ये टूवर्ड्स टीचिंग कि कुछ नहीं मिल रहा तो चलो कहीं पढ़ा लेते हैं। आप देखें कि बाहर के मुल्कों में टीचिंग के जॉब्स के लिए जो है वो इतनी लंबी लंबी लाइंस लगी होती हैं, और उसमें ये देखा जाता है कि आप अगर छोटे बच्चों को भी पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, आपकी क्या उसकी एक्सपर्टीज़ है कि आप छोटे बच्चों को हैंडल कर सकते हैं, आप उनकी साइकी को समझते हैं, आप स्टूडेंट बिहेवियर्स समझते हैं, आप खुद नफसियाती तौर पे ठीक हैं कि आप जो है वो बच्चों को वर्बली या फिजिकली या सेक्सुअली तो एब्यूज़ करने वाली टेंडेंसीज तो नहीं है आप में। ये भी एक वो है कि आप क्या बच्चों को पढ़ाने के काबिल हैं हर तरह से, ये नहीं कि आपको जो है वो सिर्फ अपना सब्जेक्ट आता है, ज़हनी तौर पे आप जो है वो क्लास में खड़े होने के काबिल हैं या नहीं। तो ये चीज़ें हम तो इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते।
1: बिल्कुल, बल्कि पाकिस्तान में तो जो छोटे स्कूल्स हैं जहाँ से बच्चों की बेस बनी है, वो वहाँ पे कोशिश करते हैं कि जो मैट्रिक पास टीचर है ना वो आ जाए,
2: जी
1: कम पे आ जाएगी।
2: बच्चों को हैंडल करना जो है वो सबसे ज्यादा, क्योंकि आप खाली दिमागों में जो चीजें डाल रहे होते हैं वो किसी आम इंसान का काम नहीं है।
1: और ऑब्वियसली अगर उसकी बेस उस वक्त स्ट्रांग नहीं होगी तो वो सारी जिंदगी उस चीज से सफर करेगा। मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व भी की है कि बीइंग अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और अपने आसपास भी, कि यूनिवर्सिटी लाइफ में आके स्टूडेंट्स का, और मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया वो टीचर की उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं रहती। आप क्लास से उठ के जा रहे हो, क्लास में उठ के आ रहे हो, और मतलब टीचर अगर कुछ कह भी रहे तो वो यही कहते हैं कि हम अब यूनिवर्सिटी में हैं, छोटे बच्चे नहीं रहे। बीइंग अ टीचर, डू यू सफर फ्रॉम दिस, या फिर कैसे आप हैंडल करते हैं सारी चीज़ें?
2: अच्छा, इसमें अब ये है कि मैं एक तो अपने तौर पर पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे लेक्चर्स जो हैं वो इतने वेल प्रिपेयर्ड हों और इतने इंटरेस्टिंग हों कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ना उठ के जाए,
1: सिर्फ स्लाइड से नहीं पढ़ना,
2: नहीं वो नहीं पढ़ना। तो उसमें अच्छा एक टीचर की तरफ से भी थोड़ा सा होना चाहिए कि आप व्हाट आर यू ऑफरिंग टू द स्टूडेंट्स, यू नो उनको होता है, स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं तो वो मुख्तलिफ क्या चीज़ है जो टीचर क्लास में लेके आ रहा है।
1: अच्छा, बहुत सॉरी आपको कट करने के लिए, लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं वो करते भी यही है कि मिड से पहले या फाइनल से पहले ना यूट्यूब से सारा कर रहे हैं, तो वो कहते हैं हमें यूनिवर्सिटी आने का क्या फायदा है।
2: हाँ, तो वो यही बात है कि टीचर को एक तो इतना नॉलेजेबल, इतना वेल इक्विप्ड होना चाहिए कि वो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है, ठीक है, वो इतनी थरो है, इतनी आप वेल रिसर्च्ड हैं आप, ठीक है, कि ये जो आपके पास सुपरफिशियल रिसोर्सेज हैं, यू नो टिकटॉक एंड यूट्यूब, इनसे कुछ मुख्तलिफ आप उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और लेकिन फिर ये होता है कि कभी कभार आप अपनी बहुत ज़्यादा इनपुट देते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें भी फिर आई थिंक वो फिर एक मौका होता है जहाँ पे यू हैव टू पुट सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द स्टूडेंट्स, यू गिव योर 100% एज ए टीचर, ठीक है। आपने जब अपना 100% दिया है फिर आपको कोई रिग्रेट या कोई गिल्ट नहीं रहता कि मैंने स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती की है, या मैंने पढ़ाया नहीं है, या मैंने क्लासेस नहीं ली हैं, या मैंने कहीं पे जो है उन्हें गलत पढ़ाया था, या मेरा दिल नहीं कर रहा था पढ़ाने का। आप वो चीज़ें अवॉइड करें, फिर आप गिल्ट फ्री होके जब उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं ना, फिर आपको होता है कि अच्छा नाउ इट्स एक्चुअली देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आप उन्हें, फिर उसके बाद अगर वो फेल होते हैं, अगर वो नहीं पढ़ना चाहते, दैट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
1: आपको नहीं लगता कि जितना हमने यूनिवर्सिटी लाइफ को फैंटेसाइज कर दिया है उसको कम करने की जरूरत है?
2: फैंटेसाइज किस तरह से किया है? किसने किया है?
1: मीडिया ने. लाइक अगर हम देखें मीडिया पे जिस तरह ड्रामाज या मूवीज में हमें दिखाया जाता है कि क्या है यूनिवर्सिटी लाइफ, और फिर जब हम जाते हैं तो वो मिड्स आ रहे हैं, असाइनमेंट्स हैं, क्विज़ेस हैं, और फिर एक आप सोच के क्या आते हो आगे क्या है, और फिर वही के अब स्कूल कॉलेज वाला माहौल नहीं है, फिर आप वहीं पे क्लास से उठ के जा रहे हो, आप ये जहमत भी नहीं कर रहे कि टीचर की बात पूरी होने दो. मैंने ऑब्जर्व की है तब मुझे आप.
2: हाँ आई थिंक हाँ ये अच्छा सवाल है कि जिस तरह की हम कॉलेज यूनिवर्सिटीज दिखा रहे हैं और उन्हें हम आई थिंक उसमें पढ़ाई वाला एलिमेंट तो हम दिखाते ही नहीं है.
1: बिल्कुल भी नहीं. वो एक
2: वो तो रोमांटिक
1: लव स्टोरी स्टार्ट हो रही है और पूरा ड्रामा उसी पे
2: जो कि तो हमारे ख्याल से तो हमारी प्रोड्यूसर्स की तरफ से बड़ी जो कि मैंने ये भी नोटिस किया है कि जब आप ऑफिसेज दिखाते हैं अपने ड्रामास में उसमें भी आपके हर उसमें बॉस को उस मोहब्बत हो गई कभी लड़की से लड़की को. अब इसके नुकसान ये होते हैं कि जो पेरेंट्स अगर भेज भी रहे हैं हमारी सोसाइटी में डर डर के वो आपके ड्रामास देख के कहेंगे कि ऑफिस में तो ये कुछ होता है. तो आप वो आई थिंक हमारा वो वैसे ही माइंड सेट हमारे है ना कि हमने काम तो करना नहीं है. तो वो फिर जब हम अपने ऑफिस दिखा रहे हैं ड्रामास में या हम अपने यूनिवर्सिटीज दिखा रहे हैं ड्रामा में तो एनी थिंग बट वर्क.
1: यहीं पे वक्त हुआ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का. सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया.

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। हम बात कर रहे थे ड्रामास पे के प्रोड्यूसर्स दिखाते हैं। सर, आप क्या समझते हैं कि राइटर्स का क्या रोल है लिखने में? ऑब्वियसली वो लिख रहे हैं या प्रोड्यूसर्स की डिमांड पे लिख रहे हैं या खुद लिख के दे रहे हैं, तो उनका क्या किरदार है और वो सोसाइटी पे कैसा इम्पेक्ट कर रहे हैं?
1: अच्छा, मैंने चूंकि 5 साल काम किया है एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में और उसमें बहुत से राइटर्स के इंटरव्यूज़ किए हैं, तो राइटर्स जो हैं उनका मसला आजकल यही चल रहा है दैट दे आर वेरी क्रिएटिव, दे आर वेल रेड, वो राइटर्स बने हैं, किसी वजह से बने हैं, लेकिन आप जो है वो उन पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। और रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो किन लोगों की तरफ से होती हैं? आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं आजकल, दे आर नॉट क्रिएटिव पीपल, दे आर नॉट रीडर्स, दे आर नॉट राइटर्स देमसेल्व्स, वो आपके बिजनेस मैन और वुमेन हैं। उनको चाहिए पैसा और उनको जो है वो नैरेटिव्स वो वाले चाहिए जिनसे हमें पैसा मिलेगा। वो फिर राइटर्स पे जो है वो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, और अगर राइटर ने जो है वो कहीं पे अपनी मर्जी करने की कोशिश की है तो राइटर्स ने ये बताया है कि उनके पूरे पूरे स्क्रिप्ट्स जो हैं वो लाल होके वापस आते हैं कि ये भी काटें, ये भी काटें, ये भी निकालें, ये भी निकालें, ये भी निकालें, ठीक है, बस ये होना चाहिए आपका, ठीक है, कि वो सास बहू की लड़ाई हो रही है, वो भाई जो है वो एक दूसरे को आपस में मार रहे हैं,
0: या वही जो हम बात कर रहे थे यूनिवर्सिटीज में जो कल्चर दिखाया जा
1: रहा है, जो फॉर्मूला आप एक दे देते हैं, आप कहते हैं कि अच्छा एक ड्रामा पॉपुलर, एक ड्रामा बहुत मशहूर हो गया इस फॉर्मूला का, ठीक है, तो अब सारे हम उस पर बनाएंगे, ताकि जो हमने जिस तरह रमजान के ड्रामास के साथ किया
0: जी,
1: कि एक जो है वो आपका फॉर्मूला पॉपुलर हो गया, एक प्लॉट आपका पॉपुलर हो गया कि एक पंजाबी फनी कैरेक्टर होगा, ठीक है, एक जो है वो बड़ा नोजी सा बच्चा होगा जो कि हर एक के मामलात में इंटरफेयर कर रहा है, एक पश्तून होगा, ठीक है, उसके एंगर इश्यूज हैं। अब हर साल जो है आप एक इस तरह का ड्रामा लेके आते हैं, ठीक है, और आपने आई थिंक 10-12 साल हो गए हैं अब इस ट्रेंड को, अब आके लोग थोड़ा इरिटेट होना शुरू हो गए हैं, तो होता है कि बस जहां तक इससे हम पैसा निकाल सकते हैं हम इसी से।
0: बल्कि इस दफा वो चेंज हुए ट्रेंड, तो उसके व्यूज ही बहुत कम थे जबकि उसकी कास्ट बहुत
1: एग्जैक्टली अब सजा ले लिया व्यूज नहीं आए क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि इसमें भी वही कुछ होगा,
0: और वो ड्रामा उसकी स्क्रिप्टिंग और उसका सब कुछ इतना अच्छा था मुझे बहुत मजा आया उसको।
1: लेकिन लोगों को यही है ना कि ये रमजान का ड्रामा है तो इसमें बस वही कुछ होगा, तो बेटर नॉट टू वॉच इट।
0: जबकि उनकी हर एपिसोड में ये था कि आपको एक, मेरी तो पूरे दिन की थकावट उतर जाती थी एक एपिसोड देख के, और हर मैसेज भी और बहुत लाइट हार्टेड वे में कि मजा आ रहा।
1: तो आप देखे ना कि उसकी वजह से फिर सफर भी आपके राइटर्स कर रहे हैं। अब ये जो स्क्रिप्ट था ये जफर महराज का था,
0: काशिफ निसार,
1: काशिफ निसार और जफर महराज के जो इतने बड़े बड़े उनके प्रोजेक्ट्स रहे हैं, ये इनकार जैसे या काबली पलाव जैसे, अब आप देखें कि उनके जैसे लोग सफर कर रहे हैं क्योंकि आपके ये प्रोडक्शन हाउसेस के माइंडसेट्स की वजह से। तो राइटर्स हमेशा यही कहा है कि हम लोग बहुत सफर करते हैं इस वजह से, तो अब इतने बड़े बड़े राइटर्स हैं, बीगुल जैसे हैं, साजी गुल जैसे हैं, वो कहते हैं कि हम क्या करें, हम तो वो हमें पूरा स्क्रिप्ट हमारा लालो लाल करके ऐसे देते थे जैसे हम जाहिल हैं, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हमें कहते हैं यहाँ से बदलो वहाँ से बदलो। तो आमना मुफ्ती की मैं इसलिए बात करता हूँ कि अब चूंकि आपने ये भी एनवायरमेंटल लिटरेचर की भी आपने बात की थी, अब आमना मुफ्ती जो है वो टीवी के लिए भी लिख रही है। पिछले दिनों उसका वो एक आया था ड्रामा, उनका खुशबू में बसे खत, ठीक है, अब नहीं हुआ इतना हिट क्योंकि उसमें भी कुछ टिपिकल चीज़ें थी, ठीक है, एक हस्बैंड है, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, नशई है, व्हाटएवर, तो नहीं लोगों को इतना पसंद आया। बट देन आमना मुफ्ती ही हैं जिन्होंने उस कमर्शियल मीडियम से निकल के आपके नॉवेल्स लिखे हैं, उल्लू बराए फरोख जैसे और पानी मर रहा है जैसे। अब पानी मर रहा है कि मैं बार बार बात इसलिए करता हूँ क्योंकि वहाँ पे आमना मुफ्ती इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। वो एक ऐसी खातून है जिसको ये पता है कि हमें आजकल किस तरह के लिटरेचर की ज़रूरत है, हमें किस तरह की कहानियाँ जो हैं वो लोगों को सुनानी है, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो आप देखें कि वही खातून जो टेलीविजन के लिए लिख रही है वो जब नॉवल के जॉनरा की तरफ आ रही है तो शी इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट वुमन, क्योंकि वहाँ पे उस पर जो है वो कोई सख्तियाँ नहीं है।
0: तो वहाँ पे पब्लिकेशंस की तरफ से नहीं आता कि ये, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग भी तो इन्वेस्ट करते हैं, तो
1: अच्छा उसमें अब जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपका जिस तरह से ड्रामा तो काफ़ी हद तक कमर्शलाइज हो गया हुआ है, लिटरेचर उस तरह से आपका भी नहीं हुआ है। लिटरेचर में बहुत से आपके जो हैं वो भी नई चीज़ें हैं, बहुत इमर्जिंग फील्ड्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने काम नहीं किया, वो बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज भी नहीं हुई है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे कहानियाँ थोड़ी बहुत, जिस तरह जब आपके पाकिस्तानी इंग्लिश राइटर्स ने लिखना शुरू किया था बैक इन दी 80s, तो वो अक्सर जो है वो इस बारे में बात करते थे कि पाकिस्तान जो है वो

0: एक बहुत एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, और फिर उसको वेस्ट के साथ कंपेयर करना और यहाँ की जो है वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ें, ये चीज़ बिकी है, ये बहुत अच्छा बिकी है, अब नहीं हो रही. नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट हाउ पाकिस्तान यू नो इज़ अ ब्यूटिफुल कंट्री इन सम रिस्पेक्ट्स. ठीक है, तो उसके बारे में भी लोग अब बात कर रहे हैं. ठीक है, वो जब इस चीज़ की तरफ आए हैं तो ये अब एक नई चीज़ है. ठीक है, ये अब उस चीज़ से लोग बाहर निकल आए कि हम लोगों ने अगर एक पाकिस्तानी इंग्लिश नावल लिखना है तो हमने उसे पाकिस्तान की बुराइयाँ ही करनी है. ऐसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान के बुरा बनने में जो है वो किन किन लोगों का हाथ है, ज़रूरी नहीं कि वो पाकिस्तानी खुद ही थे.
1: तो अगर हम कंपेरिजन करें, कोई मुवाजना नहीं है, लेकिन फिर भी डू यू थिंक कि जिस तरह पुराने राइटर्स लिखते थे, नए राइटर्स में वो नहीं है चीज़? या
0: हाँ, कम है, बहुत कम है.
1: चंद सिर्फ पैसे के लिए लिख रहे हैं,
0: पैसे के लिए लिख रहे हैं. और ये भी मैंने जब काम किया, मुझे ये भी पता चला कि बहुत सी फीमेल राइटर्स जो हैं वो इसलिए भी लिखती हैं कि हमें आज की किस्त के पैसे मिल जाएंगे तो हमारा आज रात का खाना पूरा हो जाएगा. तो ये भी है.
1: तो आपके ख्याल में कि वो इंडस्ट्री ख़राब कर रही है?
0: हुई है, इंडस्ट्री ख़राब हुई है उस वजह से. क्यों? और मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो मुझे मैंने जो मारिया वास्ती का एक इंटरव्यू किया था अखबार के लिए, तो मैंने मारिया वास्ती से ये बात की थी कि आपने जो है वो उन लोगों के आपने अशफाक अहमद के, बानो कुदसिया के, नूरुल हुदा शाह के ड्रामास में काम किया है. ठीक है, मैंने उनसे ये पूछा कि आपको तब कैसा लगता जब आप उनके डायलॉग्स पढ़ रही होती थी, जब आप उनके स्क्रिप्ट बोल रही होती थी, तो आपको नहीं लगता था कि एक बहुत ही जो है वो ज़बरदस्त काम कर रही हूँ, ये डायलॉग्स जो हैं समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड. हमारी आवासी का बहुत अच्छा जवाब था. उसने कहा था कि तब तो सभी अच्छा लिखते थे, तो हमें ये नहीं लगता था कि हम कोई बहुत अलग चीज़ कर रहे हैं या हम कोई बहुत, ये वाला स्क्रिप्ट जो है ये बहुत ही उम्दा है उससे जो हमने पिछला किया है. क्योंकि अगर हमने एक ड्रामा अशफाक अहमद का किया है, अगला हमें नूरुल हुदा शाह का मिल गया, नूरुल हुदा शाह का ख़त्म हुआ, अगला हमें बानो कुदसिया का मिल गया, बानो कुदसिया का ख़त्म हुआ, असगर नदीम सैयद का मिल गया, तो और उसने कहा कि तब हमें पता ही नहीं चलता था क्योंकि तब मायार ही यही था. यही है ड्रामा, यही है अच्छी जुबान, यही है अच्छा लिटरेचर, यही है. कहती हाँ, अब जब हम करते हैं तो फिर हम लोग याद करते हैं कि ये हम क्या कर रहे हैं और वो हम लोगों ने जो है वो क्या किया था.
1: ड्रामास और राइटर्स की बात कर रहे थे, तो जिस तरह आजकल के टाइम में उमेर अहमद के ड्रामास को बहुत पसंद किया जाता है, डोंट यू थिंक सो कि वो जिस तरह एक आदमी को या एक औरत को ज्यादा फिक्शन में दिखा देती है, असल में तो ऐसे अब बहुत ही कम एग्जिस्ट होते हैं, तो डोंट यू थिंक सो कि जो नौजवान नस्ल है उस पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है, क्योंकि वो फिर वही चीज वो फैंटेसाइज कर रही है,
0: जिस तरह ढूंढते हैं वो फिर टॉक्सिक लोगों में अच्छी चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं.
1: जिस तरह हम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे कि हमने ड्रामास में इतना देख लिया कि अब हम यूनिवर्सिटी आते ही इसी ख्याल से हैं कि ये सब कुछ होगा, फिर वो तो जब मिड्स और असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशन आती है तब पता चलता है. तो आप किस बारे में क्या राय है?
0: अच्छा, उमेर अहमद की
1: बातें,
0: उमेर अहमद ने मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक बहुत रियलिस्टिक काम भी किया है. ठीक है, जैसे नाम था या
1: जिंदगी मलाल
0: था या जिंदगी गुजार रहे में हर तरह के इश्यूज थे, तो आई थिंक बैलेंस एक है उमेर अहमद के कामों में थोड़ा बहुत काफ़ी हद तक. हाँ, जहाँ तक ये बात है कि कभी कभार बहुत आइडियल कैरेक्टर्स दे देते हैं, ठीक है, वो चीज़ वाकई वो ज्यादती है. लेकिन फिर हम लोग ये भी जब हम लिटरेचर पढ़ाते हैं तो उसमें कुछ कोर्सेज हम ये भी बताते हैं कि राइटर्स का काम हमेशा शायद आपको हमेशा, ये नहीं मैं कह रहा, हमेशा जो है वो शायद सिखाना नहीं होता. कभी कभी वो आइडियल कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट करते हैं जिनसे आप सीख लें कि इस तरह हुआ जा सकता है. हो सकता है एक ही ड्रामे में एक ऐसा कैरेक्टर हो जो बहुत रियलिस्टिक हो और आप कहें कि ये ऐसे ही होता है, एक जो है वो इतना अच्छा हो कि आप उससे सीख लें कि ऐसा बना जा सकता है, या एक इतना बुरा हो कि आप कहें कि होता तो नहीं है ऐसा लेकिन वी हैव टू स्टे अलर्ट, हो भी सकता है. तो आई थिंक वो राइटर की क्रिएटिविटी पे भी कुछ डिपेंड करता है कि वो कितनी वैरायटी लेके आ रहे हैं आपके पास. तो ये है. बाकी जहाँ तक जिंदगी गुजार रहे की, अब उसी में जिंदगी गुजार रहे में जो समीना पीरजादा का कैरेक्टर था, जो आइडियल कैरेक्टर, ठीक है, कि किस तरह उसने एज अ सिंगल मदर ही थी एक तरह से, वो उसको अकेले उसने किया सारा कुछ. कश्यप वाला कैरेक्टर भी जो है वो बहुत इंस्पिरेशनल है, उसे बहुत सी चीजें सीखी जा सकती है.
1: टॉक्सिक नहीं था?
0: टॉक्सिक मुझे तो वो फवाद खान वाला मुझे जो है वो बहुत हद तक जो है वो टॉक्सिक लगा, कि वो एक तरफ ये कहता है, मतलब एक तरफ अपनी मंगनी तोड़ता है एक लड़की से ये कह के कि तुमने जो है वो ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, और दूसरी तरफ वो यूनिवर्सिटी में हर लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है. ठीक है,
1: तो फिर
0: और फिर वो इतना हाँ, और फिर उसने पूरी जिंदगी अपनी बड़े मजे में गुजारी है, हर लड़की के साथ फ्लर्ट किया है, और बाय द एंड ऑफ द डे उसको कश्यप जैसी लड़की ही एज अ वाइफ उसको वो चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: तो वो कैरेक्टर मुझे थोड़ा सा लगा था कि ये प्रॉब्लमैटिक है इससे।
1: मेरे ख्याल में तो आजकल की जो जनरेशन है उनमें सब में यही है कि उनको यूनिवर्सिटी लाइफ में खास तौर पर कि आप कूल लगते हो अगर आप एज ए कपल
0: थोड़े से
1: चल रहे
0: हो।
1: नहीं, अच्छा। नहीं, टॉक्सिक नहीं। हाँ, टॉक्सिक
0: हाँ, हाँ, वो भी कूल बन गया, कुछ लोगों ने तो अपने इंस्टा के नीचे ना वो रेड फ्लैग्स बनाए होते हैं, जैसे वो बड़ी कोई अच्छी बात है।
1: बिल्कुल ऐसे ही है सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
0: थैंक्स टू यू फॉर हैविंग मी हियर।
1: बिल्कुल अंदाजा है कि कितनी मसरूफियत होती है, और आपका तो आई गेस सेमेस्टर भी ख़त्म होने वाला है, तो वो बहुत प्रेशर है।
0: हाँ जी।
1: तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ वक्त हुआ है प्रोग्राम के अख्तिताम का। अगले हफ्ते आपसे किसी और गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया। खुदा हाफिज़।

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: And now, you are going to listen an exclusive documentary on 92.6 FM UCP ki duniya.
1: भूख चेहरे पे लिए चांद से प्यारे बच्चे बेचते फिरते हैं गलियों में गुब्बारे बच्चे हो गया चर्ग सितमगर का कलेजा ठंडा मर गए प्यास से दरिया के किनारे बच्चे बच्चे उम्मीद की किरण और जिंदगी की नवीद होते हैं इनके हंसते मुस्कुराते चेहरे और जगमगाती आंखों से ख्वाब नजर आते हैं इनकी हंसने की झनकार हमारे चेहरों पर मुस्कान और घरों में रौनक बिखेर देती है इनकी नन्ही नन्ही शरारतें आपके अंदर जीने की उमंग पैदा करती हैं इन्हीं की वजह से आपके घर में रौनक और जीने का हुस्न नजर आता है ये नन्हे तारे बाज औकात आपके लिए मशले राह और जिंदगी गुजारने का मकसद बन जाते हैं बच्चे तो रयाकारी से पाक होते हैं लेकिन बाज औकात हालात रहन सहन और तर्ज जिंदगी इनको अपने अपने रंग में रंगती चली जाती है
2: हम सुबह सुबह घर से आ जाते हैं तो इधर आके हम शहर पे काम करते हैं हमारे घर का किराया नहीं पूरा होता इसलिए किराया दे नहीं सकते इसका किराया भी 5,000 रुपये हम चलो काम करते हैं हमारी मम्मी कहती है 1,000 रुपये चले जाओ उधर काम कर लो अब मजदूर है वो भी नहीं कर सकते इसलिए हम कुछ करके हम साथ में मिल के जो होता है हम करके आमदनी चला लेते हैं जो हम काम कर देते हैं ऊपर से पकड़ने वाले आए थे जो पैसे होते हैं वो ले जाते हैं और हम जो सारे दिन की मेहनत होती है उन पर पानी पेट जाते जो भी होते तो हम फिर भी छोड़ देते हैं हम कहते हैं अल्लाह का नाम है छोड़ दो हमें कोई जब गाड़ी साफ कर रहे होते हैं तो कोई 10 रुपये कोई 20 देते कोई देता नहीं जो अच्छे लोग होते हैं वो दे जाते कोई देते नहीं इसलिए हम अल्लाह का शुक्र है कभी घर का सरकट चल जाता है
1: और इसी तरह ये बच्चे नन्हे पौधे से तनावर दरख्त बनने के अमल से गुजरने लगते हैं जिंदगी की कश्मकश इन्हें फाइटर बना देती है दर दर की ठोकरें इनका मुकद्दर बन जाती हैं जिंदगी वक्त हालात और मजबूरियां कब इनके नन्हे नन्हे हाथों में खिलौनों की जगह अपने खानदान की जिम्मेदारियों का बोझ थमा देती हैं इन्हें पता ही नहीं चलता जिंदगी से लड़ते लड़ते ये बच्चे जिंदगी का कितना बड़ा सबक सीख जाते हैं ये इनके सिवा कोई नहीं बता सकता
3: मेरे अब्बू फोत हो गया मैं अकेला ही घर का खर्चा पानी चलाता हूँ और मैं 10 रुपये मैं गुब्बारे पे 1 कड़ा अपना खर्चा चलाता हूँ और मैं पीछे से 5 रुपये का गुब्बारा लाता हूँ और आगे आके मैं 10 रुपये का गुब्बारा बेच देता हूँ इस तरह मुझे रोज के 40-50 गुब्बारे मेरे बिक जाते हैं जिसमें फिर मुझे 250 रुपये मुनाफा हो जाता है और मैं ला के अपनी अम्मी को दे देता हूँ मेरी अम्मी भी लोगों के घर में काम करती हैं इस तरह हम दोनों माँ बेटे कमाई करते हैं और हमारे घर का खर्चा पानी चल जाता है
1: ये वो बच्चे हैं जो वक्त से पहले ही वक्त और हालात का हर रंग और मौसम देख लेते हैं हालात की नामसादत इन पर जिम्मेदारियों का वो बोझ डाल देती है जिसके लिए वो ज़हनी, जिस्मानी और फितरी तौर पर तैयार भी नहीं होते लेकिन खानदान चलाने वाले गुर्बत के थपेड़े इनके हाथों में खिलौनों के बजाय मेहनत मजदूरी के आलात थमा देते हैं और इन्हें अपने वालदैन का हाथ बटाने के लिए जालिम बेहिस और बेरहम माशरे के दलदल में हाथ पांव मारकर अपने और अपने खानदान के बका का सामान करना होता है
4: मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था तब मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया तो उनकी टांग टूट गई अब वो मेरे पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते थे मैं इस दुकान पे आया तो उस्ताद जी से मैंने कहा कि मैंने आपके पास काम करना है तो मुझे पढ़ाई का शौक था तो उस्ताद जी ने मेरे से वादा किया कि वो मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे तो मैं इधर काम करना शुरू कर दिया अब छुट्टियाँ हुई हैं मैं बड़ी मेहनत से काम करता हूँ सुबह पहले शाम को सिर्फ स्कूल से पढ़ने के बाद आता था अब मैं सुबह भी आ जाता हूँ और दिन सही मेहनत से काम करता हूँ आधे से ज़्यादा काम मैंने सीख लिया उस्ताद जी कहते हैं कि अब मैं जल्दी मैकेनिक बन जाऊँ
1: होना तो ये चाहिए कि माशरे ऐसे बच्चों के साथ हुस्न सलूक करे इनसे इनकी इस्तेदाद और जिस्मानी ताकतों के मुताबिक काम ले मगर इनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हुए इन्हें काम के बोझ तले ऐसा दबा दिया जाता है कि वो 12-16 घंटे तक मुसलसल मुशक्कत करते हैं। पूरा काम लेने के बावजूद कलील मुआवजा दिया जाता है। सितम जरीफी ये है कि इन्हें इज्जत देना तो दरकिनार इनके साथ हकारत आमेज सलूक किया जाता है। इनके नाम की सूरत में इनके वालिदैन ने इन्हें जो शनाख्त दी होती है वो भी इनसे छीन ली जाती है। इन्हें इंतहाई हकारत से पुकारा जाता है। ओए छोटे, एक ऐसा ही लफ्ज है जो इनकी शख्सियत का हिस्सा बनकर रह गया है। इन्हें इस नाम के अलावा किसी और नाम से पुकारा भी नहीं जाता। इस नाम में इज्जत से कई ज्यादा तहकीर का पहलू पोशीदा है। क्या आपने कभी सोचा है जिन्हें आप ओए छोटे कहकर पुकारते हैं, क्या ये मुनासिब है? क्या आप कभी चाहेंगे कि आपके बच्चे को, जिसका नाम आपने इसकी पैदाइश के वक्त बड़े दुलार और प्यार से रखा था, उसे कोई धुतकारते हुए अल्फाज से पुकारे? नहीं ना, तो एक पल सोचिएगा जरूर कि इन बच्चों पर क्या गुजरती होगी। ये छोटे मेरे और आपके आसपास हर वक्त हर जगह मिल जाते हैं। कचरे की बोरियां उठाए, पॉलिश का सामान लिए, फ्रूट बेचते, सड़कों पर टोकरियां लिए, बाजारों में शॉपर उठाते, मोटर मैकेनिक्स के पास, पंक्चर लगाने वाले के पास, इन बच्चों ने एक पूरे खानदान को अपने कमजोर जिस्म, पुरअज़्म, हिम्मत और हौसले के पीछे पनाह दी होती है। ऐ छोटे की सदा लगाने से पहले बस एक लम्हा, एक लहज ये जहन में याद कर लें कि ये किसी घर के वाहिद बड़े हैं और बड़ों का एहतराम हमें सिखाया गया है। नाबालिग बच्चों का रोजी के हसूल के लिए काम करना चाइल्ड लेबर कहलाता है। बच्चों के काम करने की जो सबसे बड़ी वजह देखने में आई है वो गुर्बत है। महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में इन मजदूरी करने वाले बच्चों के वालिदैन के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो अपने बच्चों को बाआसानी तालीम दिला सकें। बच्चों से इनकी बचपन की खुशियां छीन कर इनसे मशक्कत वाला काम लेना इनकी जात के लिए जहनी, जिस्मानी, समाजी और इखलाकी तौर पर इंतहाई खतरनाक और नुकसानदेह है। क्योंकि जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए, इस उम्र में इन मासूम हाथों में भारी औजार और होटल के बर्तन थमा दिए जाते हैं।
5: मेरे पापा फौत हो गए हैं, मेरी मामा ने दूसरी शादी कर ली है और मैं होटल में काम करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे शाम को 300 रुपया मिल जाता है। उनमें से मैं अपनी छोटी बहनों के लिए खाने की चीज़ें और दूध वगैरह लेके जाता हूँ, जिसे खाकर वो खुश होती हैं और मुझे भी खुशी महसूस होती है।
1: इन्हीं के बारे में किसी ने कहा है, अफलास की बस्ती में जाके देखो, वहाँ बच्चे तो होते हैं मगर बचपन नहीं होता। अफराते जर भी बच्चों को मजदूरी करने तक लाने की एक अहम वजह है, क्योंकि महंगाई के इस दौर में बच्चों के या घरेलू अखराजात पूरे नहीं होते तो मजबूरन वालिदैन को बच्चों को काम करने पर भेजना पड़ता है। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन हर साल 12 जून को पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में मनाया जाता है, जिसका मकसद बच्चों को काम करने से रोकना है। कानून बनाने वाले महलों में बैठकर कानून वजा करते हुए इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि असल मसला चाइल्ड लेबर का नहीं बल्कि मुल्क में माशी सूरतेहाल का है, जिसमें करप्शन, रिश्वत और दिन ब दिन बढ़ते हुए टैक्सेस एक अहम मसला है।
6: वहाँ 1,30,00,000 अफराद खत्ते अफलास से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर इफलास की सूरत हाल है कि लोगों को खाने पीने की चीजें मुयसर नहीं है, तो उसमें फिर हमारा शुमार कतार कहाँ, अगर हमारा मुल्क तो वैसे ही कर्जों पे चलने वाला।
1: कौन सी ममता है जो अपने जिगर के टुकड़े को मजदूरी करने वाले औजार थमाए, मगर पेट की भूख और माशरे का तल्ख रवैया इंसान को इस नहज पर ला खड़ा कर देता है कि वो ये सब करने पर मजबूर हो जाता है। एक इंसान होने के नाते हम इस बात के कैसे हामी हो सकते हैं कि फूल से मासूम बच्चों के हाथ काम करते हुए आबलों से भर जाएं? मगर किसी गरीब का गंदगी के ढेर से निवाला तलाश करना भी हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है।
7: इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। UCP.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
0: एक नई पहचान,
3: पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबिल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
4: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आमना महमूद, मुखातिब हूं आपसे FM 92.6 UCP की दुनिया से। लिसनर्स, हम हर हफ्ते नए टूल्स और AI की प्रोग्रेस डिस्कस करते हैं, लेकिन आज हम टेक्नोलॉजी के उन असरात को समझने की कोशिश करेंगे जो चुपके से हमारी सोच, लर्निंग और क्लासरूम बिहेवियर को शेप कर रहे हैं। ये वो सवालात हैं जो अक्सर हर स्टूडेंट और टीचर के जहन में आते हैं, लेकिन या तो इग्नोर कर दिए जाते हैं या कभी सीरियसली डिस्कस ही नहीं हो पाते। जैसे कि जब AI हर क्वेश्चन का फौरन जवाब दे देता है, तो क्या स्टूडेंट्स अब खुद सोचना छोड़ रहे हैं? क्या टीचर का रोल सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर तक लिमिटेड हो गया है? या सबसे इम्पोर्टेंट, जब AI सब कुछ हैंडल कर रहा है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग जैसे स्किल्स का फ्यूचर क्या होगा? इन सवालात के जवाब जानने के लिए हम आज बात करेंगे इंस्टेंट प्रॉम्प्ट्स मिसिंग थॉट्स पर, और हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या टेक्नोलॉजी हमारी मदद कर रही है या हमारी सोच को महदूद कर रही है। हमारे साथ मौजूद है मिस मारिया नज़ीर, जो FIT CS डिपार्टमेंट में सीनियर लेक्चरर हैं और यूनिवर्सिटी लेवल टीचिंग में 8 साल का तजर्बा रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस।
5: वालेकुम अस्सलाम,
4: कैसी हैं आप?
5: अल्हम्दुलिल्लाह।
4: बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए टाइम निकाला। वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। सबसे पहले तो आप हमारे लिसनर्स को ये बताएं कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है और ये क्यों ज़रूरी है।
5: अच्छा, क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है, इस पर बहुत कम डिस्कशन होती है, क्योंकि जब से AI ने इसको रिप्लेस किया है तो हम उस चीज़ की तरफ जाते ही नहीं है जो इस चीज़ से अफेक्ट हो रही है। हम सिर्फ फ़ायदे को ही डिस्कस करते हैं। तो अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें, तो बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि आप बग़ैर तस्दीक किए किसी चीज़ को मत माने या ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करें। आप खुद से तहकीक करें उसके बारे में कि ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है, ये कैसे हो सकता है। और सिर्फ यही नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया और हमने मान लिया। अगर मैं इसको उसको ज़्यादा डिफाइन तरीके में करूँ, तो सिंपल अगर हम एक सेंटेंस में इसको समराइज करें, तो हम ये कह सकते हैं कि बात सुनो सबकी लेकिन मानो अकल की। यानी कि अगर आपकी अकल आपको इस चीज़ की परमिशन देती है कि ये चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है, तो उस चीज़ को आप फॉलो करें। अदरवाइज लेकिन जो चीज़ हमारे सामने, जिस तरह आजकल सोशल मीडिया पर हर चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है,
4: फेक भी है
5: बेसिकली। तो लेकिन मसला ये है कि हम उस चीज़ को जब तक तहकीक नहीं करेंगे, हमें उसकी ऑथेंटिसिटी का पता ही नहीं चलेगा कि ये चीज़ एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। सो अगर ये ज़रूरी है कि हमारे पास, क्योंकि आजकल के डिजिटल ज़माने में हर चीज़ एक मिनट या एक सेकंड के वक्फे से ही वायरल हो जाती है,
4: ठीक है।
5: तो जब तक हम उसको देखेंगे नहीं, या हमारे अपनी क्रिटिकल थिंकिंग या अपनी सोच के मुताबिक उसको सोचने की या तहकीक करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हम एक फेक दुनिया के अंदर ही रह जाएंगे।
4: ऐसे ही है क्रिटिकल थिंकिंग, और जैसे कि आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत बढ़ा है, तो इनका आपस में कंपैरिजन अगर हम करें तो क्या नतीजे हमारे सामने आते हैं?
5: देखें, कंपैरिजन तो बेसिकली दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर हम बात करें अपनी टेक्नोलॉजी की, वो तो एक टूल है, हम इसको यूज़ करना है, यूज़ करके हमने उससे आउटपुट ले लेनी है। लेकिन अगर मैं क्रिटिकल थिंकिंग को एलिबरेट करूँ, तो वो एक स्किल है। जब तक हमारे पास स्किल नहीं होगी, हम टूल का यूज़ नहीं करेंगे। और टेक्नोलॉजी की बात करें कि जैसे कि हमारे पास कोई एक चीज़ आती है, अगर आप एक नाइफ की बात कर रहे हैं, वो चीज़ पड़ी हुई, टूल पड़ी हुई है, जब तक हमें नॉलेज नहीं होगा कि हमने उसको यूज़ कहाँ पे करना है और किस तरीके से यूज़ करना है, तो वो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारे पास। सेम इस तरीके से हमारे पास जो टेक्नोलॉजी चल रही है, जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हमने उसको किस परस्पेक्टिव में यूज़ करना है, ये किस तरीके से यूज़ करना है, जब हमने अपनी सोच ही नहीं लगानी, तो उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा नहीं है, वो हमें ख़राब ही करेगी, हमें बेटर आउटपुट या हमें बेटर लाइफ प्रोवाइड नहीं करेगी। तो क्रिटिकल थिंकिंग मछली जो रोल आता है वो आपने ये देखना होता है कि क्या ये आंसर लॉजिकल है, क्या ये आंसर हमारे जो क्वेश्चन या प्रॉब्लम है उससे रिलेट करता है कि नहीं करता, क्या मैं इस आंसर के ऊपर ट्रस्ट कर सकती हूँ। क्योंकि जो आजकल की टेक्नोलॉजी है यानी कि जो AI बेस्ड ChatGPT फॉर एग्जांपल, तो वो हमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करते हैं जिसमें एरर के चांसेस होते हैं। इवन के वो कभी नोट किया हो कि आपने वो नीचे एक लाइन भी लिखी आती है ChatGPT पे कि अगर मैं इसको एक फनी वे में बोलूँ कि मुझ पे मत रहना अपना देख लेना, तो इस पर्सपेक्टिव में अगर वो देखा जाए तो वो खुद भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, वो खुद कहता है कि आप एक दफा अपनी तहकीक भी कर लो, सिर्फ मेरे आंसर पे मत रहना। लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव की बात करें, क्योंकि मैं एज अ टीचर हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया है मोस्टली स्टूडेंट्स को तहकीक नहीं करते, सिर्फ कॉपी पेस्ट करके ले आते हैं।
2: स्टूडेंट तो पढ़ने की जहमत ही नहीं उससे करते हैं ना, कि उसने ये बीच में लिखा हुआ है, अगर वो खुद गौर कर लें तो फिर तो शायद वो तहकीक की तरफ भी ध्यान देते हैं।
5: एग्जैक्टली, तो वही क्रिटिकल थिंकिंग है, उसको देखना या सोचना एक चलो बात की बात है, लेकिन उस पर वो इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं कि वो जस्ट कहते हैं इसने जो बोल दिया है वही हर्फ आखिर है, और उसी को लेके वो हमारे पास सामने आ जाते हैं एज असाइनमेंट के तौर पर या एज अ क्विज के तौर पर कि मैं CA ठीक है हमारा।
2: जो टेक्निकल कोर्सेज हैं जैसे कि प्रोग्रामिंग इंजीनियरिंग है, इनमें AI का यूज स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग को इफेक्ट करता है?
5: जी बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा करता है। अगर मैं आज से पहले की बात करूँ, टेक्नोलॉजी अब इतनी हमारे लाइफ के अंदर इतना उसने मतलब पेनिट्रेट नहीं किया था उस चीज़ को, या हमने इतना यूज टू नहीं हुए थे उस चीज़ के ऊपर, तब जब हम प्रोग्रामिंग करते थे तो अब हमें सोचना पड़ता था कि इसका सोल्यूशन क्या है। कोई भी एक प्रोग्राम आता था हमारे पास, हमें उसकी आउटपुट को अचीव करने के लिए उसकी पूरी एक लॉजिक बिल्ड करनी पड़ती थी, पूरा एक एल्गोरिदम बनाना पड़ता था। लेकिन आज के ज़माने में स्टूडेंट क्या करता है, सिंपल जाता है ChatGPT खोलता है, उस पर अपना क्वेश्चन लिखता है, इवन कि लिखने की जहमत भी नहीं करता, जो क्वेश्चन टीचर ने दिए होते हैं उसकी पिक्चर डाल के उसका आंसर निकाल लेता है। अब वो ये देखने की कोशिश नहीं करता कि जो ChatGPT हमें आंसर प्रोवाइड किया है वो जेनेरिक प्रॉब्लम के लिए या एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अगर हम प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सो बेस्टली जो आपका सोल्यूशन होता है अगर जितना वो जेनेरिक है वो उतना ही बेस्ट और आपके पास एक्यूरेट आउटपुट प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक सोल्यूशन तो नहीं ढूंढ रहे। वो ये भी नहीं सोचते बेसिकली, अगर हम एक आम इसको ऑब्जर्व करें, जो AI टूल बने हैं बेसिकली वो भी तो किसी ने सोच के ही बनाए ना, वो भी किसी के पास प्रॉब्लम आई थी उन्होंने उसका सोल्यूशन निकाल दिया,
2: ऐसी है।
5: लेकिन हम उस चीज को समझने की कोशिश ही नहीं करते, बस हम कहते हैं कि हमारा काम हो जाए फॉर अ टाइम बीइंग तो हम उससे फायदा उठा लें।
2: लिसनर्स, वक्त हुआ जाता है एक म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहे FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: Austin, Funeral City Studios, where knowledge is empowerment. This is
1: 92.6.
2: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इंस्टेंट प्रॉम्प्ट्स एंड मिसिंग थॉट्स के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं मिस मारिया, अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जी मिस, ब्रेक पे जाने से पहले हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, क्या टेक्नोलॉजी ने स्टूडेंट्स की अटेंशन स्पैन कम कर दी है आपके ख्याल में?
3: ये एक बहुत सीरियस इशू है, ठीक है। इसको बहुत लाइटली मुंह पर डिस्कस किया जाता है, इतना सीरियस इसको लिया जाता नहीं है। ये बहुत सीरियस और क्रिटिकल इशू है हमारा। इसका जो मैं बोलूंगी, जी हाँ बिल्कुल, अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो बहुत इफेक्ट हुआ है उनके थिंकिंग के ऊपर, उनके अटेंशन स्पैन के ऊपर। इसके एक मेन रीज़न ये होती है कि वो कॉन्स्टेंट स्क्रीन के ऊपर बैठते हैं, उनकी एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इसके एक रीज़न हो सकती है। अब होता क्या है बेसिकली, ये कि वो चाहते हैं कि जो क्वेश्चन हमने पूछा है उसका हमें एक मिनट या एक सेकंड के अंदर आंसर मिल जाए, जिसकी वजह से वो सब्र नहीं कर पाते, उनके बिहेवियर के अंदर इतना ठहराव नहीं आता और उसका फोकस जो उनका होता है वो बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाता है चीजों के ऊपर। वो लेक्चर सुनते वक्त इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, असाइनमेंट में डेप्थ और उनकी जो डिटेलिंग होती है वो मिसिंग होती है और सेल्फ पेस्ड लर्निंग उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि उनको आदत नहीं रहती। चैट जीपीटी ने हमें आदि बना दिया कि हम मिनट में उनसे क्वेश्चन पूछे, वो उसका आंसर उस तरीके से हमें एक मिनट या एक सेकंड से ज्यादा वो टाइम नहीं लेता। तो उसी चीज की आदत की बेस के ऊपर जो स्टूडेंट का बिहेवियर है वो भी डाइवर्ट होता जा रहा है, उनका जो टेंशन है वो भी, उसका जो टाइम पीरियड है वो भी कम होता जा रहा है। अगर हम किसी प्रॉब्लम के ऊपर उनको सोचने के लिए बोलें तो वो शायद एक या दो या तीन मिनट से ज्यादा उस पर बैठ के सोच नहीं सकते, वो लेक्चर ज्यादा अटेंशनली सुन नहीं सकते, वो बोर होना शुरू हो जाते हैं। इवन कि मैंने अपने लेक्चर में नोट किया है कि अगर हम लेक्चर दे रहे हो तो वो हर एक मिनट के बाद अपना सेलफोन निकाल के चेक कर रहे होते हैं, उनको इतनी आदत हो गई है स्क्रीन की कि वो एक मिनट ध्यान से बात को सुन भी नहीं सकते। वो ये सोचने की जहमत ही नहीं करते कि क्या पता हमें इसमें से कुछ लर्निंग प्रोसेस मिल जाए, हमें लर्निंग का कुछ हो
2: उसके, उनको पता है कि सोल्यूशन उनके पास अवेलेबल
3: है। तो वो इस चीज पे सब्र ही नहीं करते, वो शायद ये सोचते हैं कि ये हम बोर हो रहे हैं, वो जल्दी बोर होने लगते भी हैं क्योंकि उनको आदत स्क्रीन की हो गई है, उनको आदत इंस्टेंट जवाब की हो गई है, तो वो उस चीज से नहीं अपने आप को निकाल पा रहे हैं।
2: मिस, रिसर्च की फील्ड में भी टेक्नोलॉजी का असरात हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, बुरे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, जरा उस पर भी रोशनी डालना।
3: जी बिल्कुल, असरात तो बेसिकली बहुत वे में हो रहे हैं, अच्छे भी हो रहे हैं, नेगेटिव भी हो रहे हैं, लेकिन अगर हम, क्योंकि हम इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ इफेक्ट्स की, अब रिसर्च जिस तरह पहले जमाने में होती थी कि आपको ऑथेंटिसिटी मिलती थी आपकी रिसर्च के अंदर, अब सिंपल क्या होता है क्योंकि आजकल जो चैट जीपीटी इतना एडवांस हो गया है वो आपको एक पेपर इंस्टेंट लिख के प्रोवाइड कर देता है।
2: ऐसे
3: इवन के जब पहले हमने रिसर्च करनी होती थी, हमें एक प्रॉब्लम सर्च करने के लिए काफी दिन लगते थे कि हम किस प्रॉब्लम के सर्च करेंगे, किस प्रॉब्लम पे हमने काम करना, किस प्रॉब्लम की हमने पेपर राइट अप करना है। लेकिन अब क्या होता है, अब प्रॉब्लम भी हमें चैट जीपीटी प्रोवाइड कर देता है, उसका सलूशन भी प्रोवाइड कर देता है, उसका राइटअप भी प्रोवाइड कर देता है। इससे नुकसान यह हुआ है कि हमारे पास, हमें पता नहीं है कि वो प्रॉब्लम एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही है या कितना इफेक्ट हो रहा है सोसाइटी के अंदर, हमें नहीं पता वो जो उसने राइटअप करके दिया उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, उसमें कितनी ट्रस्ट चीजें उसके अंदर, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, कितनी चीजें हमारे पास ट्रस्ट के काबिल नहीं है क्योंकि हमें सोर्सेज का नहीं पता कि चीजें वो कहाँ से लेके आ रहा है, क्या वो सोर्स ट्रस्टेबल है कि नहीं है।
2: बिल्कुल,
3: तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिसर्च है वो किसी हद तक इससे अफेक्ट हो जरूर रही है। अगर हम इसको हेल्पिंग मटेरियल यूज करें तो एक अलग बात है, लेकिन जो आजकल चल रहा है, जो ट्रेंड चल पड़ा है कि अगर आपने पेपर लिखना है तो चैट जीपीटी से लिखवा लो, अगर आपने कोई सोल्यूशन चाहिए तो चैट जीपीटी से ले लो।
2: अच्छा मिस, अगर हम स्टूडेंट टीचर बॉन्ड की अगर बात करें तो बड़ा खूबसूरत एक रिलेशन ही पाया जाता है, तो आपको लगता है कि आई टूल्स ने इस बॉन्ड को भी इफेक्ट किया?
3: जी बिल्कुल, एक्चुअली अगर हम बात करें AI टूल के इफेक्ट्स की, तो स्टूडेंट्स ने और टीचर के दरमियान जो रिलेशन होता है, जो रिस्पेक्ट का रिलेशन है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का रिलेशन है, वो बहुत हद तक उसको अफेक्ट किया और शायद मैं बोलूँगी कम भी कर दिया है। अब होता है बेसिकली क्या है कि आपने कब नोट किया होगा कि जो हमारा टीचर में मिलता है तो हम रिस्पेक्टली अभी भी खड़े हो जाते हैं उनके रिस्पेक्ट में, लेकिन आज के स्टूडेंट इस तरीके से डील नहीं करते टीचर के साथ। अगर क्लासरूम की बात करें उनके बिहेवियर की, तो वो ये कहते हैं कि ये जो पढ़ा रहे ये तो हम चैट जीपीटी से पढ़ लेंगे, ये तो हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे, ये तो हमें इंटरनेट से मिल जाएगा, तो वो जो टीचर की वर्थ है वो बहुत हद तक डाउन गई है, या आप उसको कह लेंगे उसमें ड्रास्टिक चेंज आया है। स्टूडेंट ये एक्सेप्ट करने को, आजकल का स्टूडेंट ये तैयार ही नहीं है कि टीचर हमें कुछ लर्न भी करवा सकता है, या हमें कोई नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है। उनकी माइंड में यही होता है कि ये जो पढ़ा रहे हैं हम चैट जीपीटी से पढ़ लेंगे, या ये जो बता रहे हैं हमें तो चैट जीपीटी मिनट में आंसर दे देगा। वो ये सोचते नहीं है टीचर एक मेंटोर है या एक गाइड के तौर पर हमारे सामने आएगा, वो बस ये कहते हैं हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे अच्छा तो हम चैट जीपीटी पढ़ लेंगे। और सिंपल उनके माइंड में ये होता है कि हमें ग्रेड लेने हैं इसलिए हमें टीचर के सामने ये क्लासरूम में बैठना है। वो एक नॉलेज गेनिंग वाला प्रोसेस वो तो मिस ही हो गया है। और रिस्पेक्ट की बात तो फिर अब मैं कहती हूँ ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि वो शायद इससे ज्यादा चैट जीपीटी को रिस्पेक्ट दे दें।
2: बिल्कुल सही। तो इस बॉन्ड के खराब होने से क्लासरूम इंटरेक्शन जो है उसका वो भी कम हो रही है या उस पर भी कोई मनफी असरात आ रहे हैं?
3: जी बिल्कुल। अगर मैं इसको बात करें कि अगर आप टीचर और AI टूल को अगर मिक्स करके डील करें तो शायद आपके सामने एक सुपर मेंटोर की अच्छे से एक चीज निकल के आए और ज्यादा आपको बेनिफिट्स हो। लेकिन हम सिर्फ चैट जीपीटी पे इंतजार कर रहे हैं या स्टूडेंट जो आज का है वो सिर्फ उसी को लेके चल रहा है, और उससे फर्क ये होता है कि वो क्लास में सही तरीके से अटेंशन नहीं दे पाता, वो सही तरीके से लिसन नहीं कर पाता टीचर को, क्योंकि उसके माइंड में यही है कि इससे अच्छा तो मुझे चैट जीपीटी सिखा देगा।
2: उसने उस नॉलेज को गेन करके करना ही गया।
3: एग्जैक्टली, वो कहता है इससे ये तो टाइम वेस्टिंग है, इससे अच्छा तो मैं चैट जीपीटी सीख लूंगा, मैं नेट से देख लूंगा, मुझे उनसे ज्यादा लर्निंग हो जाएगी। वो इस चीज को समझने की कोशिश भी नहीं करते कि कभी ऐसा सुरतहाल आती है कि जब आप चैट जीपीटी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं वो आपको दो या दो से ज्यादा फीडबैक प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो खुद भी कंफ्यूज होता है बेटर वन कौन सा है।
2: जी,
3: अगर आपको पता ही नहीं है कि मैंने डिसीजन कैसे लेना है या मैंने कैसे थिंक करना है कि कौन सा डिसीजन बेहतर होगा, तो आप कोई भी उठा के ले आओगे।
2: अच्छा, यही हाल आगे स्टूडेंट का है, वो खुद भी नहीं डिसाइड कर पाता कि विच वन इज बेटर।
3: एग्जैक्टली, वो सोचने की कोशिश, अगर वो टीचर को सुने उसको पता हो कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या चाहिए उनको, शायद वो उस चीज को लेके अंडरस्टैंड कर पाए कि सोल्यूशन हमारा कौन सा बेटर वन है, ये अच्छा सोल्यूशन है कि ये बुरा सोल्यूशन है, इसमें क्या खामियां आ गई हैं। वो सिर्फ उठाता है, कॉपी करता है, पेस्ट करके कहता है ये बेस्ट सोल्यूशन है, और इसी बेस पे वो टीचर से आर्ग्यू भी कर रहे होते हैं कि नहीं, मैं सामने जो आंसर निकाला था वो बेस्ट है, आप जो बता रही है वो नहीं ठीक।
2: बिल्कुल ऐसे ही है। लिसनर्स, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। सुनते रहे FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 यूसीबी की दुनिया।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीबी की दुनिया। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इंस्टेंट प्रॉम्प्ट्स एंड मिसिंग थॉट्स की। हमारे साथ मौजूद हैं मिस मारिया नजीर, अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मिस, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी और AI टूल्स के यूज ने टीचर स्टूडेंट का बॉन्ड और क्लास इंटरेक्शन जो उनसी है वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट की है। तो इन सारी चेंजेस के बाद आपको लगता है कि टीचर्स भी इनसिक्योर फील करते होंगे?
2: Somehow कह सकते हैं, क्योंकि अब जिस तरह से स्टूडेंट बिहेव करता है क्लास में तो टीचर को उस तरह से वैल्यू नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी आ जाती है। सेकंड, टीचर जब कंपेयर करता है अपने आप को ChatGPT से तो वो ये सोचता है कि शायद उसके पास जो नॉलेज है वो इतना नहीं है कि वो टीचर स्टूडेंट को अपनी तरफ ग्रैब कर सके। तो कई टीचर ये फील करते हैं कि उनका नॉलेज जो है वो AI टूल से कम्पीट नहीं कर सकता या स्टूडेंट उन्हें रिप्लेसेबल समझने लगे हैं। तो ये काफी एक डिसरिस्पेक्ट भी कह लें या आपके कॉन्फिडेंस में कमी का बाइस भी कह सकते हैं आप उसको। ये इनसिक्योरिटी टीचर की कॉन्फिडेंस को हिट करती है किसी हद तक, जो कि आपके टीचिंग मेथड पे इफेक्ट करती है। और लेकिन अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो टीचर को चाहिए बेसिकली कि AI को अपने साथ एज असिस्टेंट लेके चले, स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, स्टूडेंट्स को टीच करवाने के लिए, उनको लर्न करवाने के लिए या असाइनमेंट क्विज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शायद वो ज्यादा इस तरीके से एक पावरफुल टूल के तौर पर सामने आएंगे दोनों अगर मिलके काम करें तो।
1: बिल्कुल सही। इस बात में कितनी सच्चाई है कि जब AI हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकता है तो आप खुद प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यों सीखें?
2: ये एक प्रॉब्लम है बेसिकली, क्योंकि जो जिससे हम लोग सफर कर रहे हैं, एज अ टीचर मैं कंपेरिजन करूं या मैं देखूं जो आज की जनरेशन चल रही है उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की इतनी कोई खास कैपेबिलिटी या एबिलिटी नहीं है या क्रिटिकल थिंकिंग बहुत डाउन होती जा रही है। मैं कुछ पिछले दिनों में एक रिसर्च देख रही थी तो MIT के अंदर एक रिसर्च इस तरह की हुई है कि वो कहते हैं कि हमने कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को या कुछ पार्टिसिपेंट्स को बिठाया, उसमें से अगर हमने क्रिटिकल या उनके माइंड का स्कैन किया उसमें से 83% ऐसे मेंबर्स थे जिन जो बेसिकली डायरेक्ट ChatGPT पे निसार करते हैं, उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग थी वो बहुत लो थी एज कम्पेयर टू अदर मेंबर्स की।
1: जी
2: होता बेसिकली ये कि वो उनकी तहकीक में ये भी डिस्कस किया था कि हमने उनसे वो जो ChatGPT यूज़ करते हैं मेंबर्स, हमने उनसे क्वेश्चन पूछा एक सेकंड पहले लिखे हुए प्रोग्राम का तो वो उसको मेमोराइज नहीं कर पा रहे थे, वो उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे थे। तो उनकी मेमोरी भी अफेक्ट होती है क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ, क्योंकि जब आपने एक चीज़ के ऊपर सोचना ही नहीं है, जब आपने उसको माइंड के अंदर रखना ही नहीं है, यूज़ करना ही नहीं है, तो फिर उसका फ़ायदा ही नहीं है, वो आपकी मेमोरी भी कम से कम होती जाती है। और जो आजकल का डेवलपर है वो बेसिकली करता है क्या, वो जितने प्रॉब्लम या प्रोग्रामिंग होती है वो ChatGPT को देता है, वो उसको राइटअप करके दे देता है। अब वो राइटअप तक बात कैसे गई है, वो आउटपुट तक बात कैसे आई है, उसको बिल्कुल उस प्रोसेस का नहीं पता, उसको पता ही नहीं है कि वो आउटपुट जो ChatGPT एल्गोरिदम लिख के दिया है वो किस हद तक अफेक्टिव है और किस हद तक उसको एक्यूरेट आउटपुट दे सकता है या इससे बेहतर कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, क्योंकि सोचने की सलाहित नहीं है, वो उसी पे डिपेंड कर रहा है कि जो ChatGPT हमें दे दिया हमने कर लिया। तो बेसिकली जो AI के काम जो सिर्फ है वो सजेस्ट करने की हद तक होना चाहिए, उसको हमने कैसे मोल्ड करना है या कैसे और मजीद एक्यूरेट बनाना है ये हमारी थिंकिंग के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हम सोचेंगे हमें चीज का पता होगा तो हम उसको सर्च करेंगे तभी तो हम उसको क्रिटिकली देखेंगे उस चीज को।
1: ऐसे
2: तो अगर आप बोलेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेबिलिटी इफेक्ट हुई है तो डेफिनेटली इफेक्ट हुई है इसके साथ और बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है।
1: बिल्कुल। अच्छा, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर जॉब्स में प्रॉब्लम सॉल्वर्स की वैल्यू ज्यादा होगी या प्रॉम्प्ट लिखने वालों की?
2: अच्छा, इस चीज को मैं ऐसे देखती हूँ कि अगर आपको दोनों चीजें आती हैं तो आपकी वैल्यू बेस्ट है, लेकिन अगर आप किसी एक चीज पर डिपेंड करोगे तो शायद आप किसी न किसी टाइम पीरियड के पर जाके आप जीरो हो जाओगे। अगर आप ChatGPT डिपेंड करते हो सिर्फ, क्योंकि एक टाइम की पीरियड के बाद जाके वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ChatGPT भी जो है आपके पास उससे जो अगर आपने सोल्यूशन लेना है तो अगर आपको क्वेश्चन पूछना आएगा तो आपसे सोल्यूशन लोगे, अगर आपको एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना आएगा तो वो आपको एक अच्छी आउटपुट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि चैट जीपीटी को जैसा क्वेश्चन पूछोगे वो वैसा ही आपको आंसर प्रोवाइड करेगा। जब आपको प्रॉब्लम की डेप्थ का ही नहीं पता, आपको यही नहीं पता कि प्रॉब्लम है क्या और उससे आपको क्या आउटपुट चाहिए, तो आप उससे क्या पूछोगे वो आपको क्या ही आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। तो अगर हम बोलेंगे कि आपके पास दोनों स्किल्स अगर हों तो आप लोग मार्केट में या सोसाइटी में, टेक्नोलॉजी की सोसाइटी के अंदर सर्वाइव कर सकते हो और बेहतरीन सर्वाइव कर सकते हो।
1: क्या यूजर ने एआई टूल को सिर्फ एक टेक्निकल स्किल बना दिया है या इसके अलावा भी इसका कोई रोल है?
2: आजकल के जो यूजर हैं वो बेसिकली एआई टूल को सिर्फ एक टेक्निकल स्किल या शॉर्टकट समझ कर ही चल रहे हैं, क्योंकि उनको बस आउटपुट चाहिए, उनको सोल्यूशन चाहिए, उनका टाइम बच रहा है तो उसी पॉइंट पर लिखे। जहां अगर सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखने की बात है या आउटपुट लेने की बात है, वो कहते हैं बस हमने एक लिखा, हमें आउटपुट मिली, हमारा काम खत्म, इतना ही हमारा काम। लेकिन असल में जो एआई टूल का मकसद है ना, वो सिर्फ टास्क को ऑटोमेट करना नहीं होता, बल्कि उसको क्रिटिकल थिंकिंग को, आपकी क्रिएटिविटी को, जो डिसीजन मेकिंग को जो सपोर्ट करना है उसको मजीद शार्प करना, बेसिकली अगर आप उसको सही तरीके से यूज करो तो। जब यूजर खुद नहीं सोचता कि एआई का जो पूरा काम है या पूरा जो है प्रोसीजर वो कैसे हो रहा है, वो कैसे आउटपुट ला के दे रहा है, वो खुद से उस पर भरोसा कर रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर या हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के ऊपर। तो अगर हम ये दोनों स्किल्स और टूल को साथ लेके चलें तो शायद हम ज्यादा उससे अचीवमेंट हासिल कर सके, ना कि सिर्फ हम उसको एक टेक्निकल टूल बना के या टेक्निकल स्किल बना के चलें, क्योंकि अकेली टेक्निकल स्किल कभी तक इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं जब तक आप उसके अंदर अपनी क्रिटिकल थिंकिंग या अपनी थिंकिंग नहीं ऐड करोगे।
1: बिल्कुल सही। अगर हम आज की सारी डिस्कशन को सम अप करें तो ये जो हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं इनको किस तरह हम टैकल कर सकते हैं?
2: एज अ टीचर मैं बता सकती हूँ कि अगर आपका जो स्टूडेंट है वो जब चैट जीपीटी यूज करके आपको आंसर ला के दे रहा है, तो बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप उससे काउंटर क्वेश्चन करें,
1: वाइवा ले लें।
2: एग्जैक्टली वाइवा ले लें, उससे काउंटर क्वेश्चन करने के, जो आप सोल्यूशन लेके आए हो ये कैसे आए हो, इसके अलावा को अगर हम इस प्रॉब्लम को ऐसे चेंज कर दें, माइनर से चेंज कर दें, तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, तो शायद वो सोचने में मजबूर हो जाए कि नेक्स्ट टाइम जब मैं क्लासरूम में जाऊंगा तो ये प्रॉब्लम से रिलेटेड मुझसे जो सोल्यूशन में लेके जा रहा हूँ इससे मुझसे क्वेश्चन हो सकता है, तो मैं इसको थोड़ा देख लूँ या थोड़ा सोच लूँ इसके बारे में ये कैसे आउटपुट आ रही है। अगर हम क्लासरूम में डिस्कशन रखें, जो हमें चैट जीपीटी ने सोल्यूशन दिया उसी के ऊपर डिस्कशन रख दें कि ये और मजीद बेटर कैसे हो सकता है या इसकी क्या खामी है इसके अंदर, या हम उसको थोड़ा सा लेबोरेट या एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, तो शायद हम स्टूडेंट्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव या ज़्यादा एनवायरनमेंट को हम इंट्रैक्टिव बना सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो ज़्यादा अटेंशन दे सकते हैं उस चीज़ की तरफ।
1: लेकिन मिस, अगर डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों के साथ तो वो वहीं पे फौरन अपने मोबाइल खोलते हैं और इंस्टेंटली पूछने शुरू कर देते हैं।
2: बिल्कुल एग्री करती हूँ इस बात से, क्योंकि ये चीज़ मैं भी फेस करती हूँ क्लासरूम के अंदर, तो उसका तो ये हो सकता है कि हम बाय फोर्स जो स्टूडेंट्स के सेलफोन है वो फॉर टाइम बीइंग 10-15 मिनट के लिए साइड पर रखवा दें कि ये टास्क है आपका, आपने सेलफोन की तरफ देखना भी नहीं है,
1: एक बेहतर सोल्यूशन है,
2: ये एक बेहतर और बेस्ट सोल्यूशन होगा, शायद उनके लिए नहीं, शायद उनके फ्यूचर के लिए बेस्ट सोल्यूशन हो। ठीक है, उससे ये क्या होगा कि अगर उनके पास चैट जीपीटी नहीं होगा, अगर हम उस पर लिमिटेशन लगा देंगे कि आपने इंटरनेट को नहीं देखना, आपने चैट जीपीटी टूल्स को नहीं देखना या एआई टूल्स को नहीं एक्सप्लोर करना, उसको उसके बगैर आपने आंसर प्रोवाइड करना है, फिर देखते हैं कि आपका आंसर कितना एक्यूरेट आता, कितना रिजेम्बलेंस करता है आपके एआई के आंसर के साथ, शायद वो थोड़ा सा सोचने में मजबूर हो जाए।
1: इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का इख्तितामी लम्हात आ चुके हैं। हम अपनी ऑनरेबल गेस्ट मिस मारिया का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मिस, बहुत शुक्रिया आपका।
2: थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपके साथ,
1: बहुत अच्छा लगा आपका यहाँ आना। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से हमारे लिसनर्स को ये बात समझ आ गई होगी कि AI और न्यू टेक्नोलॉजी एक पावरफुल टूल है, लेकिन अगर हम सिर्फ आउटपुट लेने तक लिमिटेड हो जाएं और क्वेश्चनिंग या सोचने का प्रोसेस स्किप कर दें तो हम सिर्फ कंज्यूमर बन जाते हैं, क्रिएटर्स नहीं। टेक्नोलॉजी से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम उस पर पूरा डिपेंडेंट हो जाएं तो क्रिटिकल थिंकिंग एक लॉस्ट आर्ट बन जाएगी। हमें चाहिए कि AI को अपनी सोच के मुतबादिल ना बनाएं, बल्कि उसे एक थिंकिंग कंपेनियन की तरह यूज करें। अगली एपिसोड तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। सुनते रहें FM 92.6 UCB की दुनिया। अल्लाह हाफिज़।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान, आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 यूएसएफए के दुनिया, और मैं आपके होस्ट सुमेर सैयद अपने सभी सुनने वालों को, अपने सभी चाहने वालों को और अपने प्यारे प्यारे सामीन को तहे दिल से कहती हूँ खुश आमदीद। जी जनाब, आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे एक खूबसूरत से ट्रैक से, और वो ट्रैक मुझे बेहद पसंद है और मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ अपने तमाम खूबसूरत सामीन को। और आज के प्रोग्राम का मैं फॉर्मेट भी बताती चलूँ कि आज तैयारे गज़ल में हम फिल्मी म्यूज़िक यानी ऐसी गज़लें जो फिल्म्स में गाई गई थी और कहीं ना कहीं हम उनको भूल जाते हैं, हम वो सुनेंगे। आज मैंने जितनी भी गज़लें आपके लिए निकाली हैं और जितनी भी ट्रैक्स आपके लिए निकाली हैं वो सब फिल्म से लिए गए हैं। वो फिल्म्स बहुत ही खूबसूरत थी, ऐसी जिन्हें हमें देखना ज़रूर चाहिए। वेल, हम ये बातें करते रहेंगे, कुछ मूवीज़ की बात भी होगी, कुछ गज़लों की बात भी होगी, कुछ हम अपने एक्ट्रेस को भी याद करेंगे। सो आज हमारा जो प्रोग्राम है इट्स फुल ऑफ एन्जॉयमेंट, यानी आज आपको सीखने का भी मिलेगा और बहुत सारी बातें हम आपकी भी करेंगे, आपको भी सुनेंगे। तो ऐसा करते हैं, आज की पहली गज़ल सुन लेते हैं।

हमें जहां में कोई साहिब नजर न मिला। बहुत ही खूबसूरत गजल थी और इसके अल्फाज तो ऐसे थे कि ये मेरे दिल पे सीधा असर कर गए हैं। और अल्फाज ही तो होते हैं, ये अल्फाज ही तो होते हैं जो हमारे दिल पे चिपक जाते हैं, ठाक करके लगते हैं। फिर जनाब, क्या आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा है कि आपको लगता है कि आपको साहिब नजर नहीं मिले? तो क्या किया जाए, इसका हल क्या है? आप मानते हैं ना कि हम हर मसाइल का जो है हल ढूंढते हैं, ये हमारी एक काविश होती है जो शायद हमारे अंदरूनी सुकून के लिए होती है। तो अंदरूनी सुकून के लिए हम साहिब नजर ही ढूंढ लेते हैं। क्या आपने कभी साहिब नजर खुद को बनाया है अपने लिए? मुझे पता है कि आप कहेंगे बहुत ही अजीब बात कर रही है, और ऐसी बात कर रही है जिसका वजूद ही नहीं है, इस बात का तो कोई तुक ही नहीं बनता है ना। लेकिन इस बात का वजूद है, क्योंकि एक नजर जो आपको सराह सकती है, जो आपकी तारीफ कर सकती है, वो आपकी अपनी भी तो हो सकती है। आप अपने आप को भी तो सराहा जा सकता है ना, मतलब खुद को भी तो सराहा जा सकता है, खुद से भी प्यार किया जा सकता है। लेकिन मुझे पता है खुद से प्यार करना बहुत मुश्किल होता है, और जब हम खुद से प्यार करने लगते हैं ना, तो यकीन मानिए ना सिर्फ हम खुद से प्यार करते हैं बल्कि हम अपने उस प्यार को बांटते हैं, क्योंकि तब हमें खुद का पता चलता है। और जब हम खुद को जानते हैं तो यकीन मानिए हम अपने आप को बहुत हद तक सुधार लेते हैं। खुद से प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी हर खुशी को, मतलब आप अपनी हर बुराई को छुपा दें, आप अपनी हर खामी को छुपा दें और आप कहें कि मैं सिर्फ अच्छा हूँ, अच्छा हूँ। नहीं, खुद से प्यार करने का मतलब होता है कि अपनी अच्छाइयों का मवासना करना अपनी बुराइयों से, अपनी बुराइयों का मवासना करना अपनी अच्छाइयों से, और ये कोशिश करना, इस बात को मालूम करने की कोशिश करना कि आप में कौन सा ऐसा रुख है जिसे आपकी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए, कौन सी ऐसी बात है जिसे आपकी गुफ्तगू में नहीं होना चाहिए, कौन सा ऐसा चेहरा है आपका जो दूसरों के सामने नहीं जाना चाहिए, कौन सा आपका ऐसा रवैया है जिसकी वजह से दूसरे आपसे दूर होते हैं, आपको अपने उस रवैये से भी परहेज करना चाहिए। ये होता है खुद से प्यार करना। जब ये चीज़ें हो जाती हैं ना, तो बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं, जैसे कि याद। अब आप कहेंगे कि हम वापस आ चुके हैं जी, बिल्कुल। हमारा आज का जो टॉपिक है जिस पे हम मेन फोकस करेंगे वो याद है। यादों की गठरी हम अपने कांधे पे लादे हुए हैं। बहुत सी यादें हैं, हंसी यादें हैं, खूबसूरत यादें हैं, ऐसी यादें हैं जिन्हें सोचकर हम बहुत खुश हो जाते हैं, और इतने खुश होते हैं कि बस दिल करता है कि उसी खुशी में रहें। और कुछ ऐसी यादें हैं जिन्हें हम याद भी नहीं करना चाहते, जिनके बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते। लेकिन यादों को भुलाया नहीं जा सकता। आपको पता है, आपके कंधों पे ये जो गठरी पड़ी हुई है ना यादों की, यही आगे बढ़ने का हौसला है। ये नाना हो तो आगे भी नहीं बढ़ा जाता। तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें और आपको एक खूबसूरत सी आवाज़ सुनाए। और आज जो वो गज़ल हमारे सामने पेश कर रहे हैं ना, यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत है। ये राज है कि वो आवाज़ किसकी है। आप सुनिए

हाय रब्बा, नहीं यूँ लगता दिल मेरा। रेशमा जी की खूबसूरत सी आवाज़ में ये खूबसूरत सा ट्रैक आप सुन रहे थे। जो यकीनन यकीनन क्या, मैं इस बात पे 100% यकीन रखती हूँ कि आपको ये बेहद पसंद आया होगा, क्योंकि रेशमा जी की जो आवाज़ है वो सहरा की ऐसी खूबसूरत आवाज़ है जिसकी आवाज़ में दुख है। यानी कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो इतनी यूनिक होती हैं कि आप उनको सुनते हैं तो आप उनकी जो खूबसूरती है, उसकी जो दिलकशी है, उनकी आवाज़ में जो दर्द है, आप वो महसूस कर सकते हैं। और यही खासियत थी रेशमा जी में। 2013 में उनकी वफ़ात हुई थी। आज मैंने ये स्पेशल जो उनका ट्रैक था, जो कि बहुत ही मशहूर उनका ट्रैक है, उनकी याद में चलाया है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ख़ास है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत ख़ास है, और पाकिस्तान की उन खूबसूरत आवाज़ों में से हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब है। जी बिल्कुल, जैसे कि उनके जो सॉन्ग्स हैं वो हमारे दिल के बहुत करीब हैं। उनके बहुत से फेमस सॉन्ग्स हैं, जैसे कि लंबी जुदाई हो गया, गोरी ये मैं नहीं जाना परदेस हो गया। बहुत से ऐसे ट्रैक हैं जो कि हमारे बहुत पसंदीदा है, हमारे दिल के बहुत करीब है। और हाय रब्बा, दिल नहीं लगता मेरा। यकीन मानिए, ऐसा लगता है कि बहुत सारे हमारे मूड स्विंग्स आते हैं ना, कभी हम उदास होते हैं, कभी हम खुश होते हैं, तो ऐसी आवाज़ों को सुनने का दिल चाहता है। और यकीन कीजिए, ये यादें, ये आवाज़ें हमें बहुत सुकून देती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी अगर आपके एक ऐसे दोस्त की कॉल आ जाए जो बहुत सदियों पहले आपसे मिला हो, और फिर आपने ही उससे तकल्लुफ़ ना किया हो बात करने का, या उन जनाब ने ही तकल्लुफ़ ना किया हो, तो अगर आज उनकी कॉल आ जाए तो कितना अच्छा लगे ना, है ना? अच्छा, मुझे पता है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। अरे जनाब, ये भी तो सोचिए कि वो दोस्त भी शायद आपकी ही कॉल का मंतज़िर हो। मैंने बहुत मिन्नतें कर ली आपकी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आप वाकई अपनी उन यादों को, जो शायद आपने खुद से खुद दूर की हैं, उन्हें दोबारा से ले आए। अगर वो तकलीफ देती हैं तो रहने दीजिए, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि उनके ना होने से आप नामुकम्मल हैं, तो उनका होना आपकी ज़िंदगी में बेहतर है। इसी तरह से तो यादें बनती हैं, इसी तरह से तो हम दूसरों के दिलों में घर कर जाते हैं। वो कहते हैं ना कि हम दूसरों को समझ नहीं पाते, हमें नहीं पता चलता कि दूसरा किस सिचुएशन में आके हमसे बात कर रहा है। अगर हमारे किसी कोलीग ने, या हमारे साथ करने वाले, काम करने वाले किसी इंसान ने, या हमारे क्लास फेलो ने, या हमारी आज अम्मा बहुत गुस्सा थी, उन्होंने हम पे गुस्सा कर दिया, तो हम सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाते, हम बात को समझ नहीं पाते, हम उन चीज़ों से हर्ट होने लग पड़ते हैं। तो जनाब, खुद को तकलीफ मत दीजिए, समझना शुरू कर दीजिए। जितना आप समझेंगे उतनी ही मुश्किलात, उतने ही दुख जो हैं वो हमारे से दूर भागते जाएंगे। पता है वो क्या बोलेंगे? वो ये बोलेंगे कि ये तो बड़ा इंसान सोचने समझने वाला है, मैं तो नहीं जाता इसके पास। तो ऐसा कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अब समझने की एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। आज सुबह पता है क्या हुआ? आज सुबह आप बैठे हुए थे तो आपके सामने एक इंसान, आप ऐसा कह लीजिए कि आपका एक दोस्त ही आ गया, बराए नाम का दोस्त। उसने आके आपसे कुछ ऐसी बातें की जो आपको अच्छी नहीं लगी, और आपने सोचा कि ये कैसा इंसान है, मुझसे किस तरह से बात कर रहा है। लेकिन क्या आपने सोचा कि वो ऐसा क्यों है? हो सकता है कि उस दिन उसके साथ कुछ अच्छा ना हो, और हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा चल रहा हो जो वाकई उसके लिए बेहतर ना हो, और उन सिचुएशंस में आके वो ऐसी बात कर रहा है। तो जनाब, समझने की कोशिश कीजिए। आज अगर आप किसी को समझेंगे ना, कल आपको लोग समझेंगे, और ये बात बहुत फ़ायदेमंद है अगर आप इस पर अमल कर लें। चले जनाब, बातें तो होती रहेंगी। अब ऐसा करते हैं कि खूबसूरत सा ट्रैक सुनते हैं जो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं तो इसको सुनने के लिए बेकरार हूँ। आइए सुनते हैं, और ये नहीं बताएंगे कि ये किसकी आवाज़ में है। ये एक राज है जो तब खुलेगा जब आप इसे सुनेंगे।

जी जनाब, ये धुआं कहां से उठता है? दिल, दिल एक ऐसी चीज है जिसकी सुबह बहुत खूबसूरत होती है, और ये जो दिल होता है ना, ये बहुत सारी चीजों को अपने अंदर समो लेता है, छुपा लेता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे गुलाब होता है। एक गुलाब होता है ना, उसकी जो खूबसूरती होती है, उसकी जो कशिश होती है, उसकी जो खुशबू होती है, उसकी जो महक होती है, वो तब भी नहीं ख़त्म होती जब आप उसको अपने हाथ में मसल देते हैं। आप उसको मसल देते हैं, लेकिन उसकी जो खूबसूरती महक जो है ना, वो जो खूबसूरत सी महक होती है, वो आती रहती है, भीनी भीनी सी खुशबू आती रहती है। बिल्कुल ऐसा ही हमारा दिल है, चाहे जितना भी टूटा हो, चाहे जितनी भी मुश्किलात से गुजरा हो, उसमें एक गोशा हमेशा रहता है, और वो होता है नरमी का, मोहब्बत का, प्यार का। तो अपने उस गोशे को हमेशा संभाल के रखिएगा, कि वो बहुत कीमती है। तो जना, अब वो लम्हा आ चुका है जिसका इंतज़ार हमें तो बिल्कुल नहीं होता, बल्कि हमारा दिल कहता है कि वो लम्हा आए ही ना। लेकिन जिंदगी तो चलते रहने का नाम है, अगर खुदाफिस ना कहे जाए तो दोबारा आने का वादा कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर हम जाएंगे नहीं तो वापस कैसे आएंगे? जी जनाब, लेकिन जाने से पहले कुछ ऐसी बातें जो हमें आपसे करना ज़रूरी होती हैं, और वो इसलिए ज़रूरी होती हैं ताकि आप हमें याद रखें। तो आज जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, वो हम अम के बारे में भी बात ज़रूर करेंगे, जैसा कि हम सबको एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है जो हमारे दिल को सुकून दे। और पता है, दिल को सुकून तब मिलता है जब सिर्फ और सिर्फ आपका दिल मुतमईन ना हो, बल्कि आपसे मुनसलिक लोगों का दिल भी मुतमईन हो, आपसे मुनसलिक जो रिश्ते हैं वो भी आपसे मुतमईन हो। यकीन मानिए, हकीकी खुशी तो तभी होती है जब आपकी वजह से आप देखें कि बहुत सारे लोग खुश हैं, जब आपकी वजह से बहुत सारे लोग मुतमईन हैं, जब आपकी वजह से दूसरों की जिंदगियों में रोशनियां हैं, तभी सही खुशी, सही सुकून आपको मिल सकता है। सुकून इस चीज़ का नाम नहीं होता, या अमन इस चीज़ का नाम नहीं होता।

ताकि मैं बहुत खुश हूँ, बस मैं और मैं। जनाब नहीं, ये लड़ाई तो मैं की है ही नहीं, ये लड़ाई तो है अपने आप को खत्म करने की। अच्छा, मैं जानती हूँ कि बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है अपने आप से प्यार करना, अपने आप को ख़त्म करना, लेकिन इन बातों को समझने की ज़रूरत है। जब प्यार करते हैं ना, तो इसका मतलब आता है सबको साथ लेके चलना। जब अपने आप को ख़त्म करने का मतलब आता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि अपने आप को बिल्कुल साइड पे कर दूँ। नहीं जनाब, इसका मतलब ये होता है कि अपने साथ सबको लेके चलना, अपने साथ सबको लेके चलना। ऐसे ही आप भी सबको लेके चले। और जनाब एक बात कि हमेशा कोशिश करें कि आप गुलाब बन जाए, और ये भी कोशिश करें कि आप कांटा ना बने। पता है क्या, अगर आप कांटा नहीं बनेंगे ना, तो बिलाखिर आप गुलाब बन जाएंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya.
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे. जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं. जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं. जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं. ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं. इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो. A public service message by University of Central Punjab.
2: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया.
3: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया.